特里广播电台，听众朋友们，请收听拉达长的歌曲。

राजा जनक की यज्ञशाला में सीता को वरण करने के लिए आए नृप समुदाय ने श्री राम तथा लक्ष्मण को अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार देखा। कुछ को वो वीर रस की प्रतिमूर्ति दिखे तो कुछ ने उन्हें अपने काल के रूप में देखा। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। इसी प्रकार स्त्रियां भी हर्षित होकर दोनों भाइयों को अपनी मन भावन छवि में देख रही हैं। उनके लिए मानो स्वयं श्रृंगार रस मानव का अनुपम रूप धारण कर वहां पहुंच गया है। विद्वानों को प्रभु का विराट रूप दिखा और जनक जी के सगे संबंधियों ने उन्हें अपने कुटुंब के रूप में देखा। रानियों को वो अपने बालक प्रतीत हो रहे हैं तो योगी यति उनमें शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के दर्शन कर रहे हैं। भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन हुए, किंतु सीता जी जिस भाव से श्री राम को देख रही हैं उसके सुख और स्नेह का वर्णन करना कठिन है। ना तो वो स्वयं उसे व्यक्त कर सकती हैं, ना ही कवि उसके लिए सक्षम है।

0: Dengan demikian selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Saudara-saudara pendengar, acara kami untuk besok adalah sebagai berikut: setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar lagu rakyat, spotlight, disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan akhirnya sari acara esok harinya. Di sini siaran luar negeri All India Radio, seksi bahasa Indonesia dari Radio Akashvani. Penyiar Anda Kishore Das bersama dengan semua staf seksi Indonesia sebelum mengundurkan diri dari udara.
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुर दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है, और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के

0: लॉकडाउन ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्यौता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
4: काशी

0: में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
3: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्ता की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा, पत्र ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक

0: President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reached consensus on implementation of long-pending Keshau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of three-match series in Lucknow this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी मुल्कों से जोर देकर कहा है कि आलमी बहरी गुजरगाहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और मल्लाहों को टकराव से वाबस्ता खतरात के तनाजुर में तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के शहर एवियन में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। दरियाए जमुना के अहया के लिए तवील अरसे से जेरे इल्तवा केशाऊ डैम प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के बारे में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के माबेन इत्तेफाक राय हो गया है। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने उम्मीदवारों से नीट के दोबारा इम्तिहान का पर्चा लीक होने के दावों से होशियार रहने को कहा है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में तेज बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान 3-1 रोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज दोपहर लखनऊ में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी मुल्कों से जोर देकर कहा है कि आलमी बहरी गुजरगाहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और मल्लाहों को टकराव से वाबस्ता खतरात के तनाजुर में तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। फ्रांस के शहर एवियन में कल G7 की सरबराह कॉन्फ्रेंस में एक राबता इजलास से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मगरबी एशिया में लड़ाई से आलमी तजारत में रुकावट पड़ गई है और जानी नुकसान भी हुआ है। मगरबी एशिया में बहरी तजारत को लाहिक बढ़ते हुए खतरात और अदम इस्तेहकाम की इंसानी कीमत को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मल्लाहों की सलामती को यकीनी बनाना हमारी जिम्मेदारी है जो आलमी बहरी तजारत के जरिए सभी मुल्कों को बाहम मुंसलिक करते हैं। वजारत खारजा ने बताया कि वजीर आजम ने बैन अलावामी साझेदारी कायम करने खासतौर पर बढ़ती हुई बाहम मुंसलिक दुनिया में एतमाद की अहमियत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि बैन अलावामी साझेदारी को अतिया देने वाले और लेने वाले फरीक से आगे बढ़कर यगानगत और मुसावियाना मिल्कियत की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि बैन अलावामी कानून के लिए एहतराम का फुकदान बैन अलावामी यकजहती कायम करने में सबसे बड़ी रुकावट है और इस पर तरजीही बुनियाद पर तवज्जो दिए जाने की जरूरत है। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की खातिर बैन अलावामी साझेदारी में मुजाकरात और सिफारतकारी को तरजीह दिए जाने की जरूरत है। फ्रांस का शहर एवियन इस वक्त आलमी सिफारतकारी का मरकज बना हुआ है। वहां G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस अहम मरहले में दाखिल हो रही है। भारत एक साझेदार मुल्क की हैसियत से इसमें शिरकत कर रहा है। सबकी निगाहें वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान आज होने वाली दोतरफा मीटिंग पर लगी हुई है जिसका काफी इंतजार किया जा रहा था। यह मुलाकात सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर हो रही है। फरवरी 2025 में वाशिंगटन DC में दोनों लीडरों के दरमियान मुलाकात के बाद से यह पहली बिल मुशाफा मीटिंग है। उम्मीद है कि आज की मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमा मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा इश्तराक को मजीद वसअत देने के लिए वसीतर तबादले ख्याल करेंगे। साथ ही वो इलाकाई और बाहमी मफाद के आलमी उमूर पर भी बातचीत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ये मीटिंग काफी अहमियत की हामिल है क्योंकि भारत एक बड़ी आलमी ताकत के तौर पर उभरा है और आलमी बिरादरी भी पेचीदा आलमी चैलेंजों के हल के लिए अब और ज्यादा भारत का रुख कर रही है। عالمی معاملات پر تبادلہ خیال کو جہت دینے میں بھارت کے بڑھتے ہوئے رول سے اس کا سفارتی رابطے کا دائرہ بڑھنے اور مختلف فورموں میں عالمی رہنماؤں کے ساتھ سرگرم رابطوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ کل سربراہ کانفرنس کے دوران ایک رابطہ اجلاس میں وزیر اعظم نے بین الاقوامی ساجیداری قائم کرنے اور خاص طور پر بڑھتی ہوئی باہم منسلک دنیا میں اعتماد کی اہمیت پر زور دیا۔ جناب مودی نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ بھارت نے ہمیشہ انسانیت مقدم کا رویہ اختیار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کی زیر کمان کیے گئے مختلف اقدامات سے اس بات کی عکاسی بھی ہوتی ہے، جن میں بین الاقوامی شمسی اتحاد قدرتی آفات سے پیدا حالات سے نمٹنے کے لیے مضبوط بنیادی ڈھانچے کا مخلوط اتحاد، عالمی بایو ایندھن اتحاد، مشن لائف اور ایک پیڑ ماں کے نام مہم شامل ہیں۔ جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ بین الاقوامی ساجیداری کے بھارت کے نظریے کی بنیاد وسودھے کٹمبکم یعنی دنیا ایک کنبہ ہے کے دائمی فلسفے میں پنہا ہے۔ فرانس کے شہر ایویاں سے انکت کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
1: امریکی صدر کے ساتھ ملاقات کے علاوہ وزیر اعظم نریندر مودی G7 ورکنگ اجلاس میں بھی شرکت کریں گے، جس کا موضوع ہے سبھی کے فائدے کے لیے متوازن، جامع اور پائیدار معاشی ترقی کو فعال بنانا۔ اس کے علاوہ جناب مودی مصنوعی ذہانت کے محفوظ، تیز رفتار اور مؤثر استعمال کو یقینی بنانے کے موضوع پر ورکنگ لنچ میں بھی شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم مودی یورپی یونین کونسل کے صدر انتونیو کوستا اور یورپی کمیشن کے صدر وون دیر لین کے ساتھ سہ فریقی میٹنگ کریں گے اور جرمنی کے چانسلر فرائیڈریخ مرز کے ساتھ دو طرفہ ملاقات کریں گے۔ اس سے پہلے کل وزیر اعظم نریندر مودی نے سربراہ کانفرنس کے موقع پر کینیڈا اور برطانیہ کے وزرائے اعظم اور متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی تھی۔ جناب مودی نے کینیا، مصر اور جنوبی کوریا کے صدور نیز جاپان کی وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی۔ G7 ملکوں نے بھارت سمیت کئی ساجیدار ملکوں کے ساتھ صحت اور ترقی سے متعلق عالمی اشتراک کو مستحکم بنانے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ G7 کے رہنماؤں نے جمہوریہ کانگو اور یوگینڈا میں ایبولا بیماری کے پھر سے زور پکڑنے کے تناظر میں تال میل کے ساتھ بین الاقوامی کارروائی کی ضرورت پر زور دیا۔ بھارت، مصر، کینیا اور جنوبی کوریا نے بھی اقدامات میں تیزی لانے کی اپیل کی، جس میں رابطے میں آنے والے افراد کا پتہ لگانا، سرحد پر نگرانی اور بیداری پیدا کرنا شامل ہے۔ ان رہنماؤں نے ایبولا وائرس کی روک تھام کے لیے ویکسین تیار کرنے، تشخیص اور علاج معالجے کے لیے مدد کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے طویل عرصے سے زیر التواء کیشاؤ کثیر مقصدی باندھ پروجیکٹ کے معاملے پر کل نئی دلی میں ایک اہم میٹنگ کی صدارت کی۔ اس پروجیکٹ کا مقصد دریائے جمنا کا احیاء کرنا ہے۔ ایک بیان میں امور داخلہ کی وزارت نے کہا ہے کہ مذکورہ پروجیکٹ پر عمل درآمد کے لیے ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، دلی، اتر پردیش، ہریانہ اور راجستھان نے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ اس کے بعد کیشاؤ پروجیکٹ کو منظوری کے لیے مرکزی کابینہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ امتحانات کا انعقاد کرانے والی قومی ایجنسی NTA نے والدین اور امیدواروں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ نیٹ امتحانات سے پہلے گھوٹالہ سازوں سے خبردار رہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ایجنسی نے کہا ہے کہ ٹیلی گرام پر یہ گھوٹالہ ساز کچھ چینلز چلا رہے ہیں، جن پر یہ دوبارہ کرائے جانے والے امتحان کے پرچے فراہم کرنے کے دعوے کر رہے ہیں اور اس کے لیے یہ لوگ 14,000 سے 25,000 روپے تک مانگ رہے ہیں۔ ایجنسی نے واضح کیا ہے کہ اس دوبارہ امتحان کے لیے کوئی پرچہ افشا نہیں ہوا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں فرضی ثبوت کے ویڈیوز بھی گردش کر رہے ہیں، جن میں امتحان سے پہلے کی چیٹس دکھائی گئی ہیں۔ NTA نے اپنے ڈائریکٹر جنرل ابھیشیک سنگھ کی ویڈیو بھی جاری کی ہے، جس میں وہ ملک میں اس ایپ تک رسائی کو بلاک کرنے کی وجہ بتا رہے ہیں۔ بھارت نے پچھلے 12 سال میں وزیر اعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں کی بنیاد پر قابل ذکر تبدیلیاں کی ہیں۔ اس دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی بھلائی اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے بہت سے اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم ملک کی وراثت کے تحفظ اور فروغ کے تئیں حکومت کے اقدامات کا ذکر کر رہے ہیں۔
3: जनवरी 2024 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में अजीम उशान श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अंजाम दी, जो सदियों से जारी एक उमंग को पूरा करने का वक्त था। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए एक अकीदतमंद पंकज जारिया ने अपने ख्यालात का इजहार किया।
4: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
3: अक्टूबर 2022 में मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में महाकाल लोक प्रोजेक्ट के पहले मरहले को मुल्क के नाम वक्फ किया गया। इस राहदारी में अजीमुशान मुजस्मों, म्यूरल्स और फन तामीर के जरिए भगवान शिव की जिंदगी और रिवायतों की अक्कासी की गई है। वाराणसी में दिसंबर 2021 में काशी विश्वनाथ राहदारी का इफ्तिताह किया गया था। इस राहदारी के जरिए काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी से मिलाया गया है। हमारे नामा निगार से बात करते हुए वाराणसी के एक शहरी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ राहदारी से मंदिर आने वाले अकीदतमंदों को काफी सहूलत मुहैया हुई है।
5: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
3: इन बड़ी तब्दीलियों से मुस्तकबिल की तरफ बढ़ने के साथ साथ सकाफती जड़ों को मजबूत करने की जानिब मुल्क के अहद की अक्कासी होती है।
1: भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज जैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में कुछ मकामात पर शदीद बारिश की पेशगोई की है। आसाम, मेघालय, बिहार, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में औसत से शदीद बारिश का इम्कान है। IMD के मुताबिक राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज चमक का इम्कान है। इधर छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के हालात का इम्कान है। साहिली आंध्र प्रदेश, गंगाई मगरबी बंगाल, कोंकण, गोवा और ओडिशा में आज गर्मी और हब्स का मौसम रह सकता है। मर्दों के क्रिकेट में आज लखनऊ में 3 मैचों की सीरीज के दूसरे ODI में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम इस सीरीज में 1-0 से आगे है और वो आज का मैच जीतकर इस सीरीज को अपने नाम करने की कोशिश करेगी। खवातीन क्रिकेट में आज लीड्स के हेडिंगले में ICC खवातीन T20 आलमी कप में भारत और नेदरलैंड्स आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। हरमनप्रीत कौर की क्यादत में भारतीय टीम इतवार को बर्मिंगम में खेले गए पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रन से शिकस्त देने के बाद अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने की कोशिश करेगी। फुटबॉल में नॉर्वे ने फीफा आलमी कप में अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में ग्रुप 1 के अपने पहले मैच में इराक पर 4-1 से जीत हासिल करके वापसी की है। अब नॉर्वे ग्रुप 1 में सरफहरिस्त आ गया है। इससे पहले फ्रांस ने न्यू जर्सी स्टेडियम में फीफा आलमी कप 2026 के ग्रुप 1 के पहले मैच में सेनेगाल को 3-1 से हराया था। इस मैच में कैलियन मैप्पे ने अपने करियर का 58वां गोल करके एक रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने आलमी कप में लियोनेल मेस्सी का भी अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कोनैन हैदर।
3: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने फ्रांस के शहर एवियान में मुनाकिदा G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शिरकत से मुतालिक खबर को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब और कई दीगर अखबारात ने नीट UG दोबारा इम्तिहान से कबल टेलीग्राम ऐप पर पाबंदी की खबर को अपने सफ़े वल पर शाये किया है। खांसी के सिरप सिर्फ लाइसेंस याफ्ता फार्मेसियों को इजाजत। खांसी के सिरप फरोख्त की सिर्फ लाइसेंस याफ्ता फार्मेसियों को इजाजत, इस खबर को बेशतर अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस बयान को रोजनामा प्रताप ने अपने पहले सफ़े पर नुमाया किया है कि आने वाली नस्ल के पास मुल्क में तब्दीली लाने के लिए दरकार मुनफरिद तवानाई और नया अज़्म मौजूद है। इसके अलावा आज के अखबारात की अहम बैन अल-अक़वामी खबरों की सुर्खियां इस तरह हैं। अमरीका का B-52 बम्बार तैयारा परवाज के फौरन बाद गिरकर तबाह, हादसे में 8 अफराद की मौत।
1: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। وزیر اعظم نریندر مودی نے سبھی ملکوں سے زور دے کر کہا ہے کہ عالمی بحری گزرگاہوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے اور ملاحوں کو ٹکراؤ سے وابستہ خطرات کے تناظر میں تحفظ فراہم کیا جائے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج فرانس کے شہر ایویاں میں جی سیون سربراہ کانفرنس کے موقع پر امریکی

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा

0: आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉर्डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बनी। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के विधायक पी राजवेलु और VP शिव कोलुंधु तथा भाजपा विधायक GNH राजशेखरन को उपराज्यपाल KK कैलाशनाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोनाको के शासक अल्बर्ट द्वितीय से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि इस दौरान नवाचार और उभरते प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत मोनाको साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इससे ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में 1:30 बजे से खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने आज अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोन मेसी ने मैच में हैट्रिक लगाते हुए इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: London.
1: हर घर की अपनी एक कहानी होती है, हर आंगन की अपनी एक धूप होती है और हर दिन अपने साथ कुछ नया लेकर आता है। बस जरूरत होती है उन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने की, जो अक्सर हमारी नजरों के सामने होकर भी अनदेखी रह जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर आंगन और साथ ही आप हमें सुन पा रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी 366.3 मीटर पर भी। तो आइए कुछ पल निकालते हैं अपने लिए और सजाते हैं इस महफिल को प्रेरणा, मुस्कान, जानकारी और मधुर गीतों के रंगों से। मैं हूं आपके साथ इस सफर के रेडियो हम सफर सोनाली और आप सुन रहे हैं, जी हां, कार्यक्रम घर आंगन। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत एक ऐसे गीत से जो यकीनन आपके मन को छू जाएगा।

फिल्म मिलन में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। और देखिए परदेसी तो हम आपको बिल्कुल होने नहीं देंगे क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं हमेशा, कहाँ जी हाँ, घर आंगन में। और आप हमारे साथ

जुड़ते कैसे हैं आप हमारे साथ जुड़ते हैं एक ईमेल के जरिए जो है fmgoalga@gmail.com। तो बस आप हमारे साथ और दूर ना रहिए, अपनी बातें, अपनी सारी जो भी शिकायतें हैं, जो भी कमेंट्स हैं, जो भी आपकी हमारे लिए प्रतिक्रियाएं हैं, वो आप जाहिर कर सकते हैं अपने ईमेल के माध्यम से। तो इंतजार रहेगा आपकी ईमेल्स का। दोस्तों आज है 17 जून 2026, दिन है बुधवार। तो ये तो हुआ कैलेंडर के हिसाब की तारीख, लेकिन आज हिंदू पंचांग के अनुसार एक ऐसी तिथि है जिस दिन को हम बहुत ज़्यादा फख्र से और गर्व से याद करते हैं। दोस्तों इतिहास केवल बीते समय की घटनाओं का संग्रह नहीं होता, इतिहास हमें यह भी बताता है कि कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति कैसे निर्णय लेता है, अपनी बोलियों की रक्षा कैसे करता है, आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी मिसाल छोड़ता है। जी हाँ, भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप ऐसा ही एक नाम है जिनका जीवन आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और हिंदू पंचांग की तिथि अनुसार आज शूरवीर महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती है और आज उनकी इस जयंती पर राष्ट्र उन्हें शत शत नमन करता है। और उनके लिए कुछ आपके सामने कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगी। सूर्य झुका झुक गए कलाधर, सूर्य झुका झुक गए कलाधर, झुके गगन के तारे, निखिल विश्व के शीश झुके न झुके प्रताप तुम प्यारे। जी हाँ, हम यहाँ से महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें नमन करते हैं और आशा करते हैं उनके कार्यों को हमारा देश कभी नहीं भूलेगा। जब हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान की मिट्टी ऐसी है जिसने हमेशा बहुत अलग अलग उदाहरण हमारे सामने रखे हैं। भले ही शूरवीरों की बात हो, तो वहाँ की जो वीरांगनाएं हैं वो भी किसी से कम नहीं है। वो भी हमेशा अपने जीवन में ऐसे ऐसे अदम्य, ऐसे ऐसे साहसिक और ऐसे ऐसे काम करती हैं जो समाज के लिए एक प्रेरणा और एक उदाहरण बनकर हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही महिला की जिनके बारे में मैं आपके साथ अब यहाँ पर कुछ बातें साझा करना चाहूँगी। क्योंकि कहते हैं कि सपनों को उड़ान देने के लिए बड़े साधनों की नहीं, बड़े हौसलों की ज़रूरत होती है। राजस्थान की जो रूमा देवी हैं, उन्होंने सुई धागे को सिर्फ रोजगार का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि उसे हजारों ग्रामीण महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की डोर बना दिया। राजस्थान के बाड़मेर जिले की रूमा देवी का जीवन भी किसी साधारण ग्रामीण महिला की तरह ही शुरू हुआ था। कम उम्र में विवाह हुआ, सीमित शिक्षा और जीवन की कई चुनौतियों के बीच उन्होंने कभी अपने हुनर का साथ नहीं छोड़ा। उन्हें कढ़ाई और हस्तशिल्प का काम आता था और यही हुनर आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। रूमा देवी ने अपने हाथों की कला को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने गांव की दूसरी महिलाओं को भी साथ जोड़ा और उन्हें कढ़ाई व हस्तशिल्प के काम से जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे उनका ये जो प्रयास है वो एक कारवा बन गया दोस्तों, और जिन महिलाओं की दुनिया कभी घर की चौखट तक सीमित थी ना, वे अपने हुनर के दम पर नई पहचान बनाने लगी। शायद रूमा देवी ने भी नहीं सोचा होगा कि जिन हाथों से वे रंग बिरंगी कढ़ाई करती हैं, वही हाथ एक दिन हजारों महिलाओं के सपनों में भी रंग भर देंगे। आज उनके साथ जुड़कर राजस्थान की हजारों महिलाएं अपने हुनर को देश और दुनिया तक पहुंचा रही हैं। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए साल 2018 में उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन शायद उनका सबसे बड़ा सम्मान कोई पुरस्कार नहीं, बल्कि उन महिलाओं के चेहरे की मुस्कान है जिन्होंने अपने हुनर पर भरोसा करना सीखा। रूमा देवी की कहानी दोस्तों हमें ये भरोसा दिलाती है कि बदलाव हमेशा बड़े मंचों से नहीं शुरू होता, कई बार एक सुई, एक धागा और एक महिला, इनका हौसला ही हजारों जिंदगियों में उम्मीद के नए रंग भरने के लिए काफी होता है।

फिल्म गहरी चाल। इस फिल्म में आप सुन रहे थे आशा भोसले के साथ किशोर कुमार की आवाज में ये गीत। अब देखिए, हम राजस्थान से तो हो आए, और सबसे ज्यादा जरूरी देखिए, हम तभी खुश रह सकते हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है। और आजकल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम लगातार कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं। हम भले एक्सरसाइज करें, और आजकल लेकिन एक चीज का सबसे ज्यादा चलन है, और वो है योग। दोस्तों, योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का जरिया नहीं होता, बल्कि जीवन में संतुलन बनाने की एक सुंदर कला है। खासकर महिलाओं के लिए जो एक साथ कई जिम्मेदारियां निभाती हैं, योग उनको खुद से जुड़ने का एक सरल और सहज रास्ता बन सकता है। घर हो या ऑफिस, महिलाएं अक्सर परिवार, काम और रिश्तों के बीच अपनी भूमिका पूरी निष्ठा से निभाती हैं, लेकिन इस भागदौड़ में कई बार वे अपनी जरूरतों और अपने स्वास्थ्य को सबसे आखिर में रख देती हैं। ऐसे में योग हमें याद दिलाता है कि दूसरों का ध्यान रखने के साथ साथ खुद का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। अब देखिए, योग का जो मतलब होता है वो सिर्फ व्यायाम नहीं होता, ये अपने मन को शांत करने, अपनी सांसों पर ध्यान देने और कुछ पल अपने लिए निकालने की एक प्रक्रिया है। यही वजह है कि आज दुनिया भर में लोग योग को सिर्फ फिटनेस नहीं बल्कि बेहतर जीवन शैली का हिस्सा मान रहे हैं। विशेषज्ञों का भी मानना है दोस्तों कि नियमित योग और ध्यान तनाव को कम करने, मन को शांत रखने और जीवन में पॉजिटिविटी लाने में बहुत ज्यादा सहायक हो सकते हैं। शायद योग की सबसे खूबसूरत बात यही है कि यह हमें कुछ देर के लिए रुकना सिखाता है, अपनी सांसों की आवाज सुनना सिखाता है, और ये एहसास दिलाता है कि जीवन के व्यस्त राहों में खुद के लिए कुछ पल निकालना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब मन संतुलित होता है तो जीवन की चुनौतियां भी थोड़ी आसान लगने लगती हैं, और शायद यही योग का सबसे बड़ा संदेश है। खुद से जुड़िए ताकि जीवन से बेहतर जुड़ सकें।

0: आज आपके लिए एक बातचीत लेकर आए हैं जो है बच्चों के लिए योग, और इस विषय पर बातचीत कर रही हैं देविका श्रीवास्तव से रश्मि कुकरेती। तो आइए सुनते हैं इस बातचीत को।
1: कार्यक्रम है घर आंगन और चैनल आपका वही आपका पसंदीदा आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। और आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है योग बच्चों के लिए। जब बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तो पता है बच्चे बहुत खेलते हैं, कूदते हैं। हालांकि आजकल थोड़ा सा बच्चे जो मोबाइल हैं, लैपटॉप हैं, उनसे ज्यादा जुड़ गए हैं, तो हम चाहेंगे वो जुड़े योग के साथ। और योग से जोड़ने के लिए स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है देविका श्रीवास्तव को। वो आज आपको बताएंगी कि बच्चों को कौन कौन से आसन करने चाहिए, कैसे योग से जुड़ना चाहिए। देविका, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में।
2: हरिओम, मेरा नाम देविका श्रीवास्तव है। मैं एक योग शिक्षक और एक योग विद्यार्थी हूँ।
1: तो देविका, सबसे पहले ये बताएं, आजकल जो बच्चे हैं, देखिए सवेरे उठे, दूर स्कूल है, तैयार हुए, स्कूल चले गए, आए, थोड़ा बहुत कुछ खाया, नहीं खाया, हाथ में लिया कुछ ना कुछ स्क्रीन, या चाहे वो टीवी की स्क्रीन हो, चाहे मोबाइल की स्क्रीन हो, चाहे कंप्यूटर की स्क्रीन हो, तो क्या ये लाइफस्टाइल सही है?
2: स्क्रीन टाइम बच्चों का हो, मैं मना नहीं करती कि स्क्रीन टाइम नहीं दे, बच्चों को वो टाइम दे, लेकिन हाँ कि ये माइंड फ्रेश करने से ज़्यादा बेटर है आप उनको गेम्स के लिए मोटिवेट कीजिए। पर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म में फिर प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। जैसे अभी बच्चों को बहुत कम एज में उनको बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं, कुछ बच्चे अस्थमेटिक हो जाते हैं, कुछ बच्चे लथार्जी की वजह से उनका बॉडी वेट बहुत बढ़ जाता है
1: जी।
2: तो उनका मेंटल कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट खत्म होने लगता है, उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, उनको पता ही नहीं होता उनको करना क्या है।
1: तो ये सब चीजें ना हो तो क्या दिनचर्या होनी चाहिए बच्चों की?
2: बच्चों की लाइफ में मैं ये नहीं कहूंगी आप स्पोर्ट्स जोड़िए, क्योंकि बच्चे योगा की तरफ थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, उनका यही सोचना है सांस लेना सांस छोड़ना इट्स टू बोरिंग। तो नो, उनको
1: लेकिन सांस लेने से ही जिंदगी चलती है
2: अभी वो इतने नहीं समझदार, तो आप उनको योगा कराएं, आप उनको उनके तरीके से योगा कराएं।

0: बेचारी सीधी नहीं रहे। तो वही चीज़ है, अब उनको सर्वाइकल की बीमारी है, उनको लेट नहीं पसंद है, अक्सर उनको सहारा लेके, आजकल के बच्चे भी सहारा ले लेके बैठते हैं, आप कभी नोटिस करिएगा, बिना सहारे के कोई बच्चा नहीं बैठ पाएगा कमर सीधी करके,
1: ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है
0: बिल्कुल।
1: जी।
0: तो आप उनको वो छोटी छोटी छोटी छोटी आदतों को उनकी अवॉइड कीजिए। शाम को एक टाइम कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या योगा आप खुद करिए, तो वो आपको देख के खुद ब खुद सीख जाएंगे।
1: हर कोई चाहता है कि ये बच्चे की जो जो ऊंचाई हो वो खूब अच्छे से हो। हम लोग चाहते हैं हमारे बच्चे ऊंचे लंबे हो। तो अगर ऊंचाई बढ़ाने की बात हो, हम देखते हैं कई बार बच्चों को हम शुरू से ही किसी ना किसी प्रैक्टिस में किसमें डालें कि बच्चे की हाइट और ग्रोथ अच्छी हो, क्योंकि हर माँ बाप चिंतित रहता है कि कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे

0: आप उन्हें कुछ सिखा रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि वो स्कूल का काम करें, लेकिन देख रहे हैं कभी बच्चा यहाँ देख रहा है, कभी वहां देख रहा है, कभी कुछ कर रहा है, एकाग्रता नहीं है। तो एकाग्रता के लिए योग किस प्रकार बच्चों के लिए लाभदायक हो सकता है?
1: एकाग्रता के लिए बच्चों को योग तो कराना ही है, दूसरी चीज उनको एक अलग से छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं जिसके लिए आपको उनका थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा।
0: जी
1: कोशिश कीजिए स्क्रीन टाइम कम हो, सबसे बड़ा रीजन। दूसरा, खाने में कुछ चीजें ऐसी दीजिए जो वो खुशी से खाएं, क्योंकि तोरी और टिंडे देख के हमें भी दिक्कत हो ही जाती है तो थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ पार्ट खाने का ऐसा रखिए, अगर पॉसिबल है तो, कि वो खुश होके खाएं, तो वो फोन भूल जाएंगे उसके आगे
0: मुझे
1: पसंद
0: लगता है
1: है
0: जो बच्चे सुन रहे हैं वो बड़े खुश होंगे कि मैम कह रही है तोरी टिंडे में उन्हें भी दिक्कत होती है, लेकिन मैं ये बता दूं वो खुद तोरी टिंडे अच्छे से खाती हैं टिंडे
1: नहीं, मैं ये कह सकती हूँ कि पनीर जो फायदा नहीं दे सकता वो तोरी टिंडे दे सकते हैं, तो वो
0: जी
1: बहुत जरूरी है खाने
0: जी
1: के
0: और
1: लिए।
0: तोरी टिंडे के जो छोटे छोटे भाई बहन होते हैं ना, यानी कि कद्दू और दूसरी सब्जियां, वो भी खानी है, क्योंकि हरी सब्जियां तो हम सब जानते हैं हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है। बच्चों, इन्हें अपने खाने का हिस्सा जरूर बनाना है। हाँ, तो देविका जी बता रही थी एकाग्रता के लिए योग।
1: बिल्कुल, बच्चों को अक्सर होता है कि नहीं पालक नहीं खानी,
0: हाँ,
1: पालक जरूर खाएं क्योंकि उसमें आयरन है।
0: पालक पनीर खा ले।
1: हाँ, पालक पनीर खा लीजिए, पालक के पकौड़े खा लीजिए, वो
0: जी
1: ज्यादा नहीं खाने हैं,
0: जी
1: थोड़े थोड़े खाने हैं।
0: हाँ, और पालक हम जैसे कई बार हम ये भी करते हैं, पालक उबाल के आटे में गूंद देते हैं,
1: बिल्कुल,
0: उसके पराठे बना के
1: किसी
0: बच्चों
1: भी
0: बच्चे
1: तरह
0: बहुत
1: से
0: पसंद
1: खिलाइए,
0: करते हैं,
1: बच्चों
0: पालक
1: को
0: पूरी बच्चे खाते हैं।
1: पालक
0: जी
1: खिलाइए, आंवला आपको बच्चों को किसी भी तरह से खिलाना है,
0: जी
1: अचार के रूप में खिलाइए, आंवला रस के रूप में पिला दीजिए, छोटा सा एक घूंट भी पिला देंगे सुबह से, बहुत बेनिफिशियल होगा क्योंकि उससे उनकी IQ लेवल बढ़ेगा। तो बच्चों को कंसंट्रेशन के लिए एक छोटी सी प्रतिक्रिया कहते हैं योगा में, जिसे कहते हैं त्राटक।
0: अच्छा
1: हाँ जी, उसको क्या करना है, आपने सतिया हो या तो, या फिर कोई भी दिया जला दें, मोमबत्ती जला दें, बच्चे को बिठाएं, आप भी करें उसको भी कराएं, कि वो कंटिन्यूअस उस ज्योत को देखे,
0: अच्छा
1: उसके टिप को देखे, या किसी पेन की टिप से करा दीजिए, कंसंट्रेशन उससे बहुत अच्छा बढ़ेगा, बच्चा अपने आप को कंट्रोल करना सीखेगा। बच्चा फोकस करना जब सीख जाएगा तो उसको खुद समझ आएगा कि वो पढ़ाई उसके लिए जरूरी है, को पढ़ाई अच्छे से करेगा, उसका इंटरेस्ट बनने लगेगा।
0: तो बाकी बहुत अच्छी जानकारी देविका, मुझे विश्वास है जो बच्चे सुन रहे हैं, जो खाने की जो सामान बताया है कि अच्छे से खाना खाएं, अपनी डाइट अच्छा करें, ताड़ासन करें अपनी, क्योंकि आप चाहते हैं ना कि वो आप अच्छी से हाइट हो, है ना, खूब मस्ती करें, खूब खेलें, पार्कों में योग से जुड़े, और जैसा कि आप बता रही हैं कि त्राटक करें, प्राणायाम करें। योग दिवस भी आने वाला है तो
1: बिल्कुल,
0: हम क्यों ना योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। फिलहाल हम देविका दीदी को कहते हैं बाय, इस प्रोग्राम को यहीं समेटते हैं। देविका, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, हरिओम।

सत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1-8

फिल्म जाग उठा इंसान में आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में ये गीत। दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसा डाकघर जो जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर तैरता हो। सुनने में भले ही यह किसी कहानी जैसा लगे लेकिन भारत में ना एक ऐसा डाकघर सच में मौजूद है। कश्मीर के खूबसूरत डल झील में स्थित यह तैरता हुआ डाकघर दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। डल झील में बने इस अनोखे डाकघर की शुरुआत

बेमिसाल फिल्म से आप सुन रहे हैं ये गाना जिसे गाया सुरेश वाडकर, किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। अब दोस्तों ये घड़ी जो है ये हमें और अनुमति नहीं देती कि आपके साथ बातों का सिलसिला और जारी रखें, तो बस इस कार्यक्रम से आज मुझे यानी आपके रेडियो हमसफर सोनाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आंगन।
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष

0: दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टर यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष फॉन डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ भी बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात 53 अरब डॉलर मूल्य का था। भारत विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में शामिल है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। यह सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में हुई। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सरकार परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के विधायक पी राजवेल्लु और वीपी शिवकोलुंधु तथा भाजपा विधायक जीएनएस राजशेखरन को उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताहांत तक खुल जाएगा। इनमें ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर 78.66 डॉलर हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। मैच ब्रिटेन के लीड्स में शाम 7 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi is set to participate in a series of high-level outreach programs today on the second day of his visit to Avignon in France for the ongoing G7 summit. However, attention is firmly focused on his bilateral meeting with United States President Donald Trump, scheduled for this evening. This will be the first face-to-face interaction between the two leaders since their last meeting in Washington, D.C. in February 2025. During the talks, both sides are expected to deliberate on ways to further strengthen India-US bilateral cooperation across multiple sectors, along with discussions on key regional and global issues of mutual interest. The Prime Minister will also attend a working session themed promoting balanced, inclusive and sustainable economic growth for the benefit of all. The session will include G7 member countries, partner nations, as well as representatives from the International Monetary Fund and the Organization for Economic Cooperation and Development. Besides his meeting with the US President Donald Trump, Mr. Modi will participate in a working lunch on ensuring the safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The meeting will bring together G7 leaders, partner countries and chief executive officers of leading artificial intelligence companies to discuss the future of digital innovation and responsible AI development. On the sidelines of the summit, PM Modi is also scheduled to hold bilateral meetings with European Commission President Ursula von der Leyen and German Chancellor Friedrich Merz. Later, Prime Minister Narendra Modi will arrive in Paris this evening as part of his visit to France. Tomorrow morning, Prime Minister Modi is scheduled to hold meetings with leading chief executive officers. Later, he will participate in the WeaverTech Summit. Prime Minister Narendra Modi has called on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Evian, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life, highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia. The Prime Minister said, "It is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade." Prime Minister Modi has highlighted that India's defence capabilities have witnessed significant transformation over the last decade, guided by the vision of self-reliance and powered by innovation, technology and indigenous manufacturing. Sharing a thread of MyGov on his social media account, Mr. Modi explained how the country has strengthened its defence capabilities across air, land, advanced indigenous technologies. India has delivered another 5 tons of essential medicines to Kabul. The External Affairs Ministry said that it reaffirms the country's enduring commitment to providing humanitarian assistance for the well-being of the people of Afghanistan. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal called on Prince Albert II of Monaco. In a social media post, Mr. Goyal said that during their meeting, they discussed expanding the India-Monaco partnership in sectors such as sustainability, the blue economy, innovation and emerging technologies. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan and Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav chaired a high-level inter-ministerial meeting in New Delhi to review stubble management measures and discuss long-term solutions to crop residue burning. During the meeting held yesterday, Mr. Chauhan highlighted the role of active monitoring by the Stubble Protection Force across 70 tehsils in 14 districts of the National Capital Region. In Puducherry, 3 new ministers were inducted into the cabinet today, completing the long-awaited expansion of the Council of Ministers. All India NR Congress MLAs P. Rajvelu and VP Shiv Kolundhu and BJP MLA GNS Rajashekaran were sworn in as ministers at a ceremony held at Lok Nivas. In FIFA World Cup 2026, Austria won its first World Cup victory in 36 years with a 3-1 win over Jordan today. Earlier defending champions Argentina also began their World Cup campaign with a dominant 3-0 win over Algeria at Kansas City Stadium in the United States this morning. Lionel Messi scripted history by scoring his 14th, 15th and 16th World Cup goals with a hat-trick in the game. And that is the end of this news bulletin.
3: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, टीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। और श्रोताओं, अब वक्त है आपके और हमारे हम सभी के मनपसंद कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। और आज मैं आपके साथ हूँ, आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सिनेमा के उस सुनहरे दौर की एक और अनकही अनसुनी दास्तान। दोस्तों, साल था 1963। उस दौर में जब पर्दे पर प्यार और संगीत की नई परिभाषाएं लिखी जा रही थी, तब एक ऐसी फिल्म आई जिसने दर्शकों को हंसाया भी और रुलाया भी और साथ ही साथ गुनगुनाने पर मजबूर भी कर दिया। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रही हूँ राज कपूर और नूतन की फिल्म क्लासिक फिल्म दिल ही तो है की। लीजिए सुनते हैं इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इस फिल्म की कहानी जितनी दिलचस्प थी, उतने ही दिलचस्प इसके बनने के पीछे के किस्से हैं। चलिए सबसे पहले रुक करते हैं इस फिल्म की लाजवाब स्टार कास्ट और इसकी कहानी की ओर। साथियों, फिल्म में मुख्य भूमिका में थे बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर और उनके साथ थी अपनी संजीदा अदाकारी के लिए मशहूर हीरोइन नूतन। जी हाँ साथियों, कहानी है यूसुफ यानी राज कपूर की, जो एक अमीर घराने के लड़के हैं, लेकिन अपनी पहचान छुपाकर एक शायर और कव्वाल चांद बनकर रहते हैं।

दोस्तों, चांद को मोहब्बत हो जाती है जमीला नाम की एक लड़की से जो कि नूतन है। झूठी पहचान, गलत फहमियां और फिर उस प्यार को पाने की जद्दोजहद। रावलपिंडी के बैकड्रॉप पर बनी यह एक मुकम्मल म्यूजिकल ड्रामा फिल्म थी।

दोस्तों, राज कपूर का ओल्ड मैन लुक, क्या आप जानते हैं? इस फिल्म में राज कपूर ने सिर्फ एक कव्वाल का ही नहीं बल्कि एक बूढ़े आदमी का भेष भी बदला था। उनका यह गेटअप इतना परफेक्ट था दोस्तों कि सेट पर जब वो पहली बार गए तो उन्हें कोई भी नहीं पहचान पाया था।

गाना जो अभी हमने आपको सबसे पहले सुनवाया था, लागा चुंदरी में दाग, संगीतकार रोशन साहब ने जब मन्ना डे को यह गाना ऑफर किया तो मन्ना डे पहले घबरा गए थे, क्योंकि यह एक बेहद कठिन शास्त्रीय बंदिश पर आधारित था गाना। लेकिन अब उन्होंने गाया तो यह गाना एक इतिहास बन गया। साहिर लुधियानवी की शायरी, इस फिल्म के गीत महान शायर साहिर लुधियानवी ने लिखे थे। फिल्म का टाइटल जो है दिल ही तो है, असल में मिर्ज़ा गालिब की एक मशहूर गज़ल से प्रेरित था।

साथियों, अमूमन देखा गया है कि प्राण साहब का जो फिल्मों में किरदार होता है वो थोड़ा सा खतरनाक विलेन का होता है, लेकिन यहाँ पर इस फिल्म में उन्होंने शेखू का ऐसा किरदार निभाया जो थोड़ा सा कॉमिक था और थोड़ा बहुत विलेनियस भी था। राज कपूर और प्राण की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इस फिल्म में देखने लायक थी।

तो दोस्तों, अगर आपने 1963 की यह मास्टरपीस फिल्म दिल ही तो है अब तक नहीं देखी है तो आप ज़रूर इसे देखिएगा। इसमें राज कपूर की मासूमियत और नूतन की सादगी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी।

दोस्तों आज के सफर में बस इतना ही, तो इजाजत दीजिए अपनी दोस्त शिल्पा गोस्वामी को, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।

0: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की दिफाई साजो सामान की सालाना तैयारी में माली साल 2025-26 के दौरान अभी तक का 1.8 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि इस अहम हुसूलयाबी से पिछले साल की 1.54 लाख करोड़ रुपए की पैदावार के मुकाबले 15.6% तरक्की का इजहार होता है। ये तरक्की माली साल 2020-21 से अब तक की 110% है, जब ये तरक्की महज 84,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क ही में तैयार किए गए दिफाई साजो सामान की मकदार में माली साल 2013-14 के मुकाबले तकरीबन 4 गुना इजाफा हुआ है, जो महज 4,746 करोड़ रुपए था। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ हरगिज बर्दाश्त न करने की पॉलिसी से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी फैसलाकुन कार्रवाइयों तक से भारत ने एक वाज़े पैगाम भेजा है कि उसकी खुद मुख्तारी के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क्यादत में इसकी कौमी सलामती के ताने बाने में एक तारीखी तब्दीली आई है। उन्होंने ये भी कहा कि दिफा के शोबे में आत्मनिर्भरता के लिए मुल्क के अज़्म से मुल्क की सलाहियतों को इस्तेकाम मिला है। फौजें जदीद बनी हैं और जमीन, समंदर, फजा, साइबर और खला के शोबों की तैयारियों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। वजीर दिफा ने खास तौर पर कहा कि पिछले 12 साल के सफर से एक मजबूत तर, महफूज तर, खुद कफील और मजीद पुरेतमाद भारत की अक्कासी होती है, जो अपने कौमी मफादात की हिफाजत के लिए तैयार है और एक कायदाना आलमी ताकत के तौर पर उभरा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर कहा है कि पिछली दहाई के दौरान भारत की दिफाई सलाहियतों में खातिर खा इजाफा हुआ है। ये इजाफा खुद किफालत के नजरिए की रहनुमाई में हुआ है, जिसे इख्तिरा, टेक्नोलॉजी और साजो सामान को मुल्क ही में तैयार किए जाने से तकवियत मिली है। जनाब मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर माइक ऑफ के जरिए पैगाम भेजते हुए वजाहत की है कि मुल्क ने किस तरह फजा, जमीन और समंदर में अपनी दिफाई सलाहियतों को मजबूत किया है, मुल्क ही में तैयार की गई टेक्नोलॉजीज को जदीद तरीन बनाया है और खुद इन्हिसारी और कौमी सलामती के लिए एक मजबूत तर बुनियाद की तामीर की है। उन्होंने कहा कि इससे भारत की तरक्की की एक झलक मिलती है, जो उसने पिछले 12 साल में दिफा के शोबे में हासिल की है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ज़राती और डब्बा बंद ग़िज़ाई अशिया की बरामदात में इजाफे से मुतालिक तंजीम के चेयरपर्सन अभिषेक देव ने बताया कि अमरीका, ब्राज़ील, चीन और यूरोपीय यूनियन जैसे बड़े आलमी बरामदकारों से मुकाबले के बावजूद भारत की ज़रई बरामदात आज 5,000 मसनूआत पर मुश्तमिल हैं, जो एक दहाई कबल तकरीबन 280 मसनूआत पर मुश्तमिल थीं। जनाब देव ने बताया कि मुल्क की ज़राती बरामदात गुज़श्ता साल 53 अरब डॉलर तक पहुंच गई और भारत ज़राती मसनूआत बरामद करने वाले टॉप 10 मुल्कों में शामिल रहा। नशीली अशिया की रोकथाम से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की 8वीं ब्रिक्स मीटिंग भारत की ब्रिक्स सदारत के तहत वर्चुअल वसीले से मुनक्किद की गई। नशीली अशिया के कंट्रोल के ब्यूरो एनसीबी ने बताया कि भारत, चीन, इथियोपिया, इंडोनेशिया, रूस, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहिदा अरब अमारात के मंदुबीन ने मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग के दौरान मंदुबीन ने नशीली अशिया की कौमी सूरतेहाल से मुतालिक रिपोर्ट्स एक दूसरे के सुपुर्द की और नशीली अशिया से लाहिक खतरात पर बातचीत की। जमीन के बंजर होने और खुश्कसाली की रोकथाम का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन जमीन के बंजर होने की रोकथाम और खुश्कसाली के असरात से निमटने के लिए बैनुल अक्वामी तआवुन से मुतालिक बेदारी में इजाफे के मकसद से मनाया जाता है। इस साल का मौजू है सरसब्ज जंगलाती जमीन, तस्लीम कीजिए, एहतराम कीजिए और बहाली कीजिए। इस मौजू के तहत सरसब्ज जंगलाती जमीन की इक्तिसादी, माहौलियाती और सकाफती कदर को और ज्यादा तस्लीम किए जाने, इसके रिवायती फवायद की बुनियाद पर इसका एहतराम किए जाने और जो जमीन बंजर हो गई है उसकी बहाली में काफी ज्यादा सरमाया लगाए जाने की बात कही गई है। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा में तब्दीली के वजीर भूपेंद्र यादव ने सभी से ये याद रखने को कहा है कि जमीन तमाम तर माहौलियाती निजाम की बुनियाद और हमारी गिजा नीज तवानाई का असल वसीला है।
1: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को

0: 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
1: भारत ने मजीद 5 टन जरूरी दवाइयां काबुल को भेजी हैं। वजारत खारिजा ने कहा है कि अफगानिस्तान के लोगों की फलाह बहबूद के लिए इंसानी मदद फराहम करने के तई मुल्क के मुस्तकिल अज़्म की दोबारा तस्दीक होती है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कहा है कि आइंदा 4 से 5 दिन के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के हिस्सों में मजीद आगे बढ़ने के लिए हालात साजगार हैं। क्रिकेट में लखनऊ में भारत ने 5 मैचों की सीरीज के दूसरे एक रोजा बैन अल-अक़वामी मुकाबले में 6 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 45 रन बना लिए हैं। इससे कबल अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुभमन गिल की क्यादत में भारतीय टीम मस्कूरा सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है और आज का मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करने का इरादा रखती है। और अब आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के शहर एवियों में G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस से अलग अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम मोदी फ्रांस के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की खुद मुख्तारी के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए फैसलाकुन कार्रवाइयों के तौर पर जिक्र किया। भारत के दिफाई साजो सामान की तैयारी में माली साल 2025-26 के दौरान 1.78 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जो साल 2020-21 से अब तक 110% इजाफा है। और मर्दों के क्रिकेट में लखनऊ में 3 मैचों की सीरीज का दूसरा ODI भारत और अफगानिस्तान के दरमियान जारी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashwani and I'm Shagun Chopra with the midday news. The headlines. G7 leaders adopt declarations on global stability, security cooperation and efforts to counter transnational organized crime. Prime Minister Narendra Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Evian, France, to reach Paris this evening as part of his visit to France. Defence Minister Rajnath Singh says India's sovereignty non-negotiable, cites surgical strikes, Balakot and Operation Sindoor as decisive actions against terrorism. India's defence production soars to record 1.78 lakh crore rupees in financial year 2025-26, surges 110% since 2020-21. Security forces intensify enforcement and counter-insurgency operations across Manipur. 3 militants arrested, 26 illegal bunkers destroyed. And in men's cricket, second ODI of 3-match series between India and Afghanistan underway in Lucknow. And now the news in detail. The G7 leaders have adopted a series of declarations focusing on global stability, security cooperation and efforts to counter transnational organized crime. In their statement, the leaders welcomed the deal between the United States and Iran under US President Donald Trump. The leaders emphasized the importance of safe maritime passage through the Strait of Hormuz and supported steps to strengthen regional security. In another declaration, the G7 pledged to intensify action against drug trafficking, describing it as a growing threat to national security, public health and economic stability. Partner countries Brazil and South Korea also backed the initiative. They also proposed a G7 plus ports network to enhance intelligence sharing and disrupt trafficking routes alongside deeper cooperation with international agencies such as Interpol and UNODC and a stronger focus on tracing and recovering illicit financial assets. Prime Minister Narendra Modi is set to participate in a series of high-level outreach programs today on the second day of his visit to Evian in France for the ongoing G7 summit.

0: were arrested from different locations in Imphal West District. Police said they were allegedly involved in multiple violent and criminal activities. U.S. President Donald Trump has criticized Israel's military campaign against Hezbollah in Lebanon, saying the conflict has continued for too long and has led to excessive civilian casualties. Speaking on the sidelines of the G7 summit in France, Mr. Trump said Israel was fighting Hezbollah too long and that too many people are being killed. India has delivered another 5 tons of essential medicines to Kabul. The External Affairs Ministry said that it reaffirms the country's enduring commitment to providing humanitarian assistance for the well-being of the people of Afghanistan. In cricket, India was 70 for 1 in 8-point overs against Afghanistan on the second one-day international of the three-match series in Lucknow. Earlier, Afghanistan won the toss and elected to field first. Shubman Gill-led men in blue are currently leading the series 1-0 and will aim to clinch the series in today's clash. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% up in the afternoon session today. The Sensex rose 225 points to 77,033, while the Nifty advanced 66 points to 24,056 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. G7 leaders adopt declarations on global stability, security cooperation and efforts to counter transnational organized crime. Prime Minister Narendra Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avignon, France, to reach Paris this evening as part of his visit to France. Defence Minister Rajnath Singh says India's sovereignty non-negotiable, cites surgical strikes, Balakot and Operation Sindoor as decisive actions against terrorism. India's defence production soars to record 1.78 lakh crore rupees in financial year 2025-26. Surges 110% since 2020-21. Security forces intensify enforcement and counter-insurgency operations across Manipur. 3 militants arrested, 26 illegal bunkers destroyed. And in men's cricket, second ODI of three-match series between India and Afghanistan underway in Lucknow. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया 3 आतंकवादी गिरफ्तार 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी अब समाचार विस्तार से G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया G7 नेताओं ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वाशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
1: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए, भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओज के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
3: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
4: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो COP 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
5: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
6: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
7: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया

0: 91 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार। दोस्तों, आज का यह पूरा घंटा, आधा घंटा समर्पित है भारतीय सिनेमा के उस कलाकार को जिसने अपने संघर्ष, मेहनत और प्रतिज्ञा के दम पर करोड़ों दिलों में जगह बनाई। साथियों, वह कलाकार जिसने डांस को एक नई पहचान दी, जिसने एक्शन किया, रोमांस किया, कॉमेडी की और गंभीर अभिनय से राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपने अपन सभी के मनपसंद एक्टर यानी मिथुन चक्रवर्ती की, मिथुन दा की। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं उनका ये गीत।

दोस्तों, कोलकाता के एक साधारण बंगाली परिवार में जन्म हुआ गौरांग चतुर्वेदी का, सॉरी गौरांग चक्रवर्ती का, जिन्हें दुनिया आज मिथुन चक्रवर्ती के नाम से जानती है। दोस्तों, बचपन साधारण था।

लेकिन उनके सपने असाधारण। युवावस्था में उनका जीवन कई उतार चढ़ावों से गुजरा, लेकिन परिवार की परिस्थितियों और जीवन की सच्चाइयों ने उन्हें एक नई दिशा दी। साथ ही उन्होंने अभिनय को अपना भविष्य बनाने का फैसला किया। दोस्तों, फिर उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। वहां से अभिनय की बारीकियां सीखी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। मुंबई में संघर्ष उनका इंतजार कर रहा था।

साथियों, मुंबई में मिथुन दा के शुरुआती दिन बेहद कठिन थे। कई निर्माताओं ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि उनका लुक पारंपरिक हीरो जैसा नहीं है। कई बार उन्हें छोटे मोटे रोल मिल जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था कि संघर्ष के दिनों में उन्होंने भूख और असफलता दोनों को बहुत ही करीब से देखा है, लेकिन यही संघर्ष आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना।

श्रोताओं, साल 1976 में आई फिल्म मृग्या, यह फिल्म भारतीय सिनेमा के महान निर्देशक मृणाल सेन ने बनाई थी। मिथुन दा ने इसमें इतना शानदार अभिनय किया कि पहली ही फिल्म में उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया। जरा सोचिए दोस्तों, जहां अधिकांश कलाकार पहली फिल्म में पहचान बनाने के लिए संघर्ष करते हैं, वहीं मिथुन ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीत लिया। यहीं से शुरू हुआ एक नए सितारे का सफर।

दोस्तों 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह एक सांस्कृतिक घटना थी। फिल्म ने भारत में तो रिकॉर्ड बनाया ही, साथ में रूस, चीन और कई देशों में इस फिल्म ने धूम मचा दी। मिथुन दा का जिमी किरदार घर घर में मशहूर हो गया। रूस में उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि लोग उन्हें देखने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते थे। उनकी तस्वीरें लाखों घरों में लग गईं। कहा जाता है कि उस दौर में रूस में भारतीय फिल्मों का मतलब ही मिथुन चक्रवर्ती था।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार में मिथुन चक्रवर्ती को। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, TRM 810 किलो हर्ट्ज पर। और अब वक्त है कार्यक्रम मैथिनी मेलोडीज का। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो दिल को इतने पसंद आते हैं कि उनके बारे में बोलना ही क्या। और कहते भी हैं ना साथियों कि ओल्ड इज गोल्ड। तो शुरुआत करते हैं अपने इस कार्यक्रम की इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत। लीजिए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, प्यार ऐसे करो कि हद ना हो, भरोसा इतना करो कि शक ना हो, इंतज़ार इतना करो कि वक्त ना हो, प्यार ऐसे करो कि कभी नफरत ना हो।

दोस्तों, नज़र को नज़र की नज़र ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे। तुझे देखा है इस नज़र से, जिस नज़र से तुम्हें नज़र ना लगे।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। लीजिए, अब सुनते हैं किशोर कुमार के स्वर में ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, उलझने दो इन जुल्फों को कि इनमें कैद होना भी एक सुकून है। सुना है सुलझे हुए लोगों की दुनिया में अक्सर इच्छाएं दम तोड़ देती हैं।

दोस्तों, किसी से दिल लग जाए प्रेम नहीं, हाँ किसी के बिना दिल ना लगे वो प्रेम है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मैथनी मेलोडीज। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: पीछे से आवाजें आती रहीं, मगर मैंने मुड़कर ना देखा। घर आकर भी वो निगाहें मेरा पीछा कर, वही बेबाक बेहया और रूह को मुजमहिल कर देने वाली निगाहें। क्या वाकई मसला मुझमें है? मैंने खुद से सवाल किया। आज भी वही सवाल मेरे साथ है। अगले दिन शहर के धुंधलकी में पार्क की राहों पर निकल आई कि शायद ये ताज़ा हवा में दिल की बेकरारी को कुछ सुकून बख्श सके। पार्क की ठंडी हवा भी इस बेचैनी को कम ना कर सकी। मैं खामोश बैठी रही, जैसे खुद से लड़ रही हूँ। अचानक एक आवाज़ आई, बेटा यहाँ बैठ सकती हूँ? मैंने चौंक कर देखा, एक उम्र रसीदा खातून थी, चेहरे पर सुकून, आंखों में नरमी। जी जरूर, मैंने जगह बनाते हुए कहा। वो बैठ गई और मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा, क्या मतलब? वो धीरे से बोली, यही कि तुम किसी बोझ तले दबी हुई हो, और ये बोझ अंदर का नहीं बाहर का है। मेरे पास जवाब नहीं था। बेटा, दुनिया की नज़रें कभी नहीं बदलती, हम मगर हम सीख सकते हैं कि किन नज़रों को दिल तक आने देना है और किन को नहीं। उनकी बातें सीधे दिल में उतर गईं। मैं कुछ कहती इससे पहले वो उठ गई, अपना ख्याल रखना, और चली गई। मैं देर तक उन्हें जाते हुए देखती रही। उसी लम्हे मेरे अंदर कुछ टूटा और बनने लगा। वापसी के रास्ते में फिर वही एहसास हुआ, कोई देख रहा है। मैंने पलट कर देखा, एक शख्स खड़ा था नजरें जमाए हुए, मगर इस बार मेरी नजरें नहीं झुकाई। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा। चंद लम्हों की खामोश जंग थी, फिर उसने नजरें हटा ली। मेरी धड़कन तेज थी, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे कि मैंने खुद को पा लिया हो। मैं बेंच पर बैठी उन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक मुझे एहसास हुआ, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये तो हर उस लड़की की कहानी है जो हर रोज इन नजरों की अजियत से गुजरती है। मुझे नेहा याद आ गई। वो हमेशा पूरे एतमाद रहने वाली लड़की थी, मगर एक दिन बस में सफर कर रही थी, रश ज्यादा था। वो खिड़की के पास खड़ी थी कि उसे महसूस हुआ जैसे किसी की नजरें मुसलसल उसका पीछा कर रही हैं। उसने कई बार इधर उधर देखा, मगर वो शख्स हर बार नजरें चुरा लेता। आखिरकार वो अगले स्टॉप पर उतर गई, हालांकि उसे अभी बहुत आगे जाना था। बाद में उसने बस इतना ही कहा था, कभी कभी रास्ता छूट जाने का दुख नहीं होता, खुद का सुकून छिन जाए उसका होता है। मैंने आंखें बंद कर ली। ये वाकयात जैसे एक लड़ी में जुड़ते जा रहे थे। फिर नमीरा का ख्याल आया। वो एक ऑफिस में काम करती, पहनती बासलाहियत, मगर एक दिन उसने कहा, मेरी काबिलियत से ज्यादा लोग मेरी शक्ल को नोटिस करते हैं। उसकी आवाज में तलखी थी। मीटिंग में जब मैं बात करती हूँ तो कुछ नजरें मेरी बात नहीं, मुझे देख रही होती है। अब तब मुझे लगता है जैसे मेरी मेहनत कहीं पीछे रह गई हो। मैंने उस दिन उसके चेहरे पर पहली बार थकन देखी थी। और फिर एक और वाकया। एक छोटी सी बच्ची, शायद 12 साल की, स्कूल से वापस आ रही थी। मैंने उसे सड़क के किनारे चलते देखा। वो बार बार अपने दुपट्टे को संभाल रही थी, जैसे खुद को छुपाने की कोशिश कर रही हो। मैंने दिल ही दिल में सोचा, ये उम्र तो बेफिक्री की होनी चाहिए थी, फिर ये झिझक क्यों? इन सब वाकयात ने मेरे दिल पर जैसे एक नक्श बना दिया था। ये सिर्फ चंद कहानियां नहीं थी, ये एक मुश्तरक एहसास था, एक खामोश अजियत जो हर जगह मौजूद थी। मैंने आंखें खोली, पार्क वैसा ही था, लोग वैसे ही थे, मगर अब मैं बदल रही थी। मैंने खुद से कहा, अगर ये सब सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा तो फिर खामोश रहना हल नहीं है। उसी लम्हे वही उम्र रसीदा खातून की बात याद आई, कि नजरों को दिल तक आने देना है, ये तुम्हारे इख्तियार में है। मैंने एक फैसला किया, मैं खुद को छुपाऊंगी नहीं, मैं खुद को बदलूंगी भी नहीं, मैं खुद को समझूंगी, क्योंकि मसला मेरा वजूद नहीं, मसला वो नजरें हैं जो देखना नहीं जानती। मैं उन नजरों से डरूंगी नहीं, मैं उन्हें पहचानूंगी और खुद को उनसे आजाद रखूंगी। ये कहानियां शायद अलग अलग थीं, मगर दर्द एक ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि कोई इसे बयान कर देता है, कोई खामोशी से सह लेता है। काश इन निगाहों के लिए भी कोई कानून होता, उनकी हदबंदी भी मुमकिन होती, ताकि लड़कियां महज देखी ना जाएं, बल्कि खुद को महफूज महसूस कर सके।
1: सामईन, अभी आप अफसाने से महसूस हो रहे थे। पेश कर रही थी मोहतरमा मुसर्रत जहां। उनवान था निगाहों की अजियत। आइए सामईन, चलते हैं मौसीकी।

की तरफ। वफा की राह में ये तो जरूर होना था, वफा की राह में ये तो जरूर होना था, तेरी तलब में मुझे तुझसे दूर होना था। फकत खराश सी आई थी शीशे दिल पर, फकत खराश सी आई थी शीशे दिल पर, मगर उसी से मुझे चूर चूर होना था। ऐसा मैं सुनते हैं खूबसूरत गजल, कलाम है नसीम सहर का, आवाज़ दी है हरिहरन ने।

अर्थ क्या है कि ज़िस्त के ताने बाने बुन न सका, ज़िस्त के ताने बाने बुन न सका, ऐसा बिखरा कि खुद को चुन न सका। ज़िस्त के ताने बाने बुन न सका, ऐसा बिखरा कि खुद को चुन न सका। रात मैंने कहा था कुछ लेकिन, रात मैंने कहा था कुछ लेकिन, मुझ में वो शोर था कि सुन न सका। रात मैंने कहा था कुछ लेकिन, मुझ में वो शोर था कि सुन न सका। और एक गज़ल के कुछ शेर पेश हैं कि अर्ज़ किया है कि गर तुम आमाल की बुनियाद यकीन पर रख दो, गर तुम आमाल की बुनियाद यकीन पर रख दो, फिर ये मुमकिन है कि आकाश ज़मीं पर रख दो। गर तुम आमाल की बुनियाद यकीन पर रख दो, फिर ये मुमकिन है कि आकाश ज़मीं पर रख दो। और घर के कोने में जो टूटा हुआ आईना है, घर के कोने में जो टूटा हुआ आईना है, मेरे चेहरे को भी ले जाओ वहीं पर रख दो। घर के कोने में जो टूटा हुआ आईना है, मेरे चेहरे को भी ले जाओ वहीं पर रख दो। और एक दो शेर और मुलाहिज़ा फरमाएं। अर्ज़ किया है कि गुमशुदा अहद की तस्वीर दिखाती है मुझे, गुमशुदा अहद की तस्वीर दिखाती है मुझे, एक मानूस सी आवाज़ बुलाती है मुझे। गुमशुदा अहद की तस्वीर दिखाती है मुझे, एक मानूस सी आवाज़ बुलाती है मुझे। मैंने अहबाब को आईना दिखाना चाहा, मैंने अहबाब को आईना दिखाना चाहा, वज़ादारी मगर आईना दिखाती है मुझे। मैंने अहबाब को आईना दिखाना चाहा, वज़ादारी मगर आईना दिखाती है मुझे। और इतनी शिद्दत से तुझे मैंने तो चाहा भी नहीं, इतनी शिद्दत से तुझे मैंने तो चाहा भी नहीं, जितनी शिद्दत से तेरी याद सताती है मुझे। इतनी शिद्दत से तुझे मैंने तो चाहा भी नहीं, जितनी शिद्दत से तेरी याद सताती है मुझे। गुमशुदा अहद की तस्वीर दिखाती है मुझे, एक मानूस सी आवाज़ बुलाती है मुझे। और एक मतला और दो तीन शेर देखें कि मुख्तसर बहर के गज़ल के ये शेर हैं। अर्ज़ किया है कि आंसू बिखर रहे हैं, आंसू बिखर रहे हैं, कर्जे उतर रहे हैं, आंसू बिखर रहे हैं, कर्जे उतर रहे हैं, और सदियां गुजारने पर, सदियां गुजारने पर लम्हे निखर रहे हैं, सदियां गुजारने पर लम्हे निखर रहे हैं। ये शेर बतौर ख़ास है, ऐ काश वो न आए, ऐ काश वो न आए, हम याद कर रहे हैं, ऐ काश वो न आए, हम याद कर रहे हैं। ये गज़ल के कुछ शेर और मुलाहिज़ा फरमाएं। अर्ज़ किया है कि खाक जब जवान हो गई, खाक जब जवान हो गई, एक हसी मकान हो गई, खाक जब जवान हो गई, एक हसी मकान हो गई, रास जब मशक्क़त आ गई, धूप सायबान हो गई, रास जब मशक्क़त आ गई, धूप सायबान हो गई। और बूढ़े बागबाँ के सहन में, बूढ़े बागबाँ के सहन में फिर कली जवान हो गई, बूढ़े बागबाँ के सहन में फिर कली जवान हो गई। और मेरी छोटी सी वो दिल की बात, मेरी छोटी सी वो दिल की बात, बढ़ के दास्तान।

0: हो गई मेरी छोटी सी वो दिल की बात, बढ़ के दास्तान हो गई और मैं किसी का दर्द बन गया। मैं किसी का दर्द बन गया, वो किसी की जान हो गई। मैं किसी का दर्द बन गया, वो किसी की जान हो गई। हादसों के तीर यूं चले, हादसों के तीर यूं चले, जिंदगी कमान हो गई। हादसों के तीर यूं चले, जिंदगी कमान हो गई। खाक जब जवान हो गई, एक हंसी मकान हो गई। एक गज़ल से कुछ शेर और मुलाहजा कर लें। अर्ज़ किया है कि बिछड़ने वाले का मुतलक ख्याल थोड़ी है, हमारी आँखों में रंगे मलाल थोड़ी है। बिछड़ने वाले का मुतलक ख्याल थोड़ी है, हमारी आँखों में रंगे मलाल थोड़ी है। और ये मसलहत का ताल्लुक़ है दरमियाँ वरना, ये मसलहत का ताल्लुक़ है दरमियाँ वरना, उसे मेरा मुझे उसका ख्याल थोड़ी है। ये मसलहत का ताल्लुक़ है दरमियाँ वरना, उसे मेरा मुझे उसका ख्याल थोड़ी है। और ये शेर बतौर ख़ास आप हजरात की नज़र कर रहा हूँ। उसे मेरा मुझे उसका ख्याल थोड़ी है। ये डूबता हुआ सूरज है फिर से निकलेगा, ये डूबता हुआ सूरज है फिर से निकलेगा। हमारी हार हुई है जवाल थोड़ी है, ये डूबता हुआ सूरज है फिर से निकलेगा। हमारी हार हुई है जवाल थोड़ी है। और ये शेर भी देख लें कि किसी को याद में रखना कमाल होता है, किसी को याद में रखना कमाल होता है, किसी को भूलना कोई कमाल थोड़ी है। किसी को याद में रखना कमाल होता है, किसी को भूलना कोई कमाल थोड़ी है। तुम्हें पता नहीं हम किसके गम में ज़िंदा हैं, तुम्हें पता नहीं हम किसके गम में ज़िंदा हैं, जवाब है ये हमारा सवाल थोड़ी है। तुम्हें पता नहीं हम किसके गम में ज़िंदा हैं, जवाब है ये हमारा सवाल थोड़ी है। और एक गज़ल के कुछ शेर और पेश कर रहा हूँ, समाप्त कीजिए। अर्ज़ किया है कि उसकी मजबूरियों को ध्यान में रख, उसकी मजबूरियों को ध्यान में रख, मत गलत फहमियाँ गुमान में रख। उसकी मजबूरियों को ध्यान में रख, मत गलत फहमियाँ गुमान में रख। और जाने अपनों में कौन दुश्मन हो, जाने अपनों में कौन दुश्मन हो, आखिरी तीर तो कमान में रख। जाने अपनों में कौन दुश्मन हो, आखिरी तीर तो कमान में रख। एक दिन आसमां तेरा होगा, एक दिन आसमां तेरा होगा, बस ज़रा हौसला उड़ान में रख। एक दिन आसमां तेरा होगा, बस ज़रा हौसला उड़ान में रख। और मैं के एहसास हूँ तेरे गम का, मैं के एहसास हूँ तेरे गम का, मुझको पलकों के साएबान में रख। मैं के एहसास हूँ तेरे गम का, मुझको पलकों के साएबान में रख। उसकी मजबूरियों को ध्यान में रख, मत गलत फहमियाँ गुमान में रख।
1: सामिन, अभी आप जनाब इरफान आज़मी से उनका ये कलाम सुन रहे थे। तो सामिन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम अक्सी अदब।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही देर में यानी 4 बजे आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

听众朋友们，请收听咖啡 David Rao 唱的拉吉斯坦邦的民间歌曲，请你们唱首。

0: नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार शर्मा और आप सुन रहे हैं खेल और खिलाड़ियों से जुड़ा आपका पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। मेरे साथ हैं प्रतीक आनंद।
1: नमस्कार
0: श्रोताओं, फीफा विश्व कप चल रहा है, फुटबॉल प्रेमियों के लिए तो सितारे जमीन पर उतर आए हैं। दरअसल कल रात और आज सुबह हुए मुकाबलों में ये विश्व कप सितारों के प्रदर्शन की चकाचौंध से जगमगा उठा।
1: अर्जेंटीना ने मेसी की दमदार हैट्रिक की मदद से अल्जीरिया

हॉकी में FIH नेशंस कप में जहां भारतीय महिला हॉकी टीम का सामना कल उरुग्वे से होगा और FIH प्रो लीग पे भी चर्चा करेंगे जहां भारतीय पुरुष टीम के सामने होगी जर्मनी की चुनौती। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम का सामना अफगानिस्तान से लखनऊ में चल रहा है जहां भारतीय टीम ने 403 रन की एक बड़ी चुनौती दी है। 3 मैचों की सीरीज है, भारतीय टीम 1-0 से आगे चल रही है, जबकि ICC महिला T20 विश्व कप में भारतीय टीम नीदरलैंड से शाम 7 बजे से खेलेगी। प्रत्येक चुनाव अंक की शुरुआत फीफा विश्व कप से मैचेस से करें जहां मेसी की धूम मची है। इस सुपरस्टार ने अर्जेंटीना के कल अल्जीरिया के खिलाफ एक शानदार हैट्रिक की, पहली विश्व कप की पहली हैट्रिक है। 39 साल के मेसी हैं, क्या कमाल किया है, पूरा इस रिपोर्ट में जो कल मैच खेले गए।

0: अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी फुटबॉल के जादूगर हैं। विश्व चैंपियन अर्जेंटीना के लिए इस विश्व कप में पहला ही मैच मेसी मैजिक का मंच बन गया। जिस खिलाड़ी का एक गोल देखने के लिए फैंस बेताब रहते हों, वो अगर एक या दो नहीं बल्कि तीन तीन गोल कर दे तो आप दर्शकों की खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते। हाँ, स्टेडियम में बैठे दर्शकों के शोर का लगभग 118 डेसिबल से ऊपर का पैमाना एक इशारा जरूर कर देता है कि मेसी के खेल को लेकर दर्शकों में कितनी दीवानगी है। कोई नाच रहा है, किसी की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे हैं। ये तो मेसी के दीवानों के लिए मनचाही मुराद पूरे होने जैसा है। खुशी के इन्हीं लम्हों के लिए तो दर्शक सरहद को पार करके सैकड़ों हजारों मील का सफर तय कर स्टेडियम में इतिहास का साक्षी बनने पहुंचते हैं। मेसी यूं ही फिनोमेनन यानी फुटबॉल के करिश्माई खिलाड़ी हो भी नहीं गए। लगभग 39 साल की उम्र में विश्व कप में अपनी पहली हैट्रिक करना, छठा विश्व कप खेलते हुए जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज के सर्वाधिक 16 गोलों के रिकॉर्ड की बराबरी करना एक दिन का खेल है भी नहीं। लेकिन अगर आप कड़ी मेहनत जारी रखते हैं, अपने कौशल में निरंतरता बनाए रखते हैं, तो एक न एक दिन ऐसा होता जरूर है। मेसी ने अल्जीरिया के खिलाफ 17वें, 60वें और 76वें मिनट में गोल किए।
1: Lionel Messi stands alone.
0: पहले हाफ में अर्जेंटीना ने अल्जीरिया के खिलाफ 1-0 की बढ़त ले ली थी। उसके बाद दूसरे हाफ में मेसी ही मेसी नजर आए। यूं तो टीम के साथी खिलाड़ी मिडफील्डर रोड्रिगो डी पॉल, एंजो फर्नांडेज, एलेक्सिस मैक एलिस्टर ने भी सराहनीय प्रदर्शन किया, लेकिन मेसी की चमक के आगे इनका प्रदर्शन छुपना स्वाभाविक है। ग्रुप जे में अर्जेंटीना शेष पर पहुंच गया है। अल्जीरिया की ओर से मैच के 8वें मिनट में फारिस शाइबी का गोल ऑफसाइड करार दिया गया था। अगर ये गोल होता तो मैच की तस्वीर अलग हो सकती थी, लेकिन ये मैच तो मेसी के नाम ही होना था। मेसी ने विश्व कप में अपना पहला गोल 16 जून 2006 को किया था और दिलचस्प तो ये है कि अपना 16वां गोल उन्होंने 16 जून 2026 को पूरा कर एक रिकॉर्ड भरा प्रदर्शन किया। अपना अंतिम विश्व कप खेल रहे मेसी का खेल उम्र के साथ तो और निखरता जा रहा है। 35 की उम्र से पहले उन्होंने विश्व कप में केवल 6 गोल किए थे। 35 की उम्र के बाद वे 10 और गोल कर चुके हैं और विश्व कप में अपने गोलों की संख्या 16 तक पहुंचा दी है। सर्वाधिक गोल के विश्व कीर्तिमान से महज एक कदम दूर हैं। बात फ्रांस के मुकाबले की करें तो काइलिन एम्बापे की गिनती दुनिया के बेहतरीन स्ट्राइकरों में होती है। फीफा विश्व कप 2026 में फ्रांस के अपने पहले ही मैच में 27 साल के इस फुटबॉलर ने 2 गोल कर न केवल सेनेगल के खिलाफ 3-1 की जीत दिलाई बल्कि देश के लिए अपना 58वां गोल करके फ्रांस के टॉप स्कोरर बन गए।

0: उन्होंने इस मैच में पहले ओलिवर गिरोड के 57 गोल के रिकॉर्ड की बराबरी की और फिर उसे तोड़ भी दिया। पिछले 8-9 वर्षों में रियल मैड्रिड के इस फुटबॉलर की धूम मची है। अम्बापे का विश्व कप में कुल 14वां गोल है। फ्रांस के पास पहले भी माइकल प्लाटिनी, जिनेडिन जिटान, थेरे हेनरी, पेपिन जैसे स्टार फुटबॉलर रहे हैं, लेकिन एम्बापे अलग ही दर्जे के फुटबॉलर साबित हो रहे हैं। एम्बापे ने 18 साल की उम्र में फ्रांस को 2018 में विश्व कप दिलाने में मदद की, उसके बाद 2022 में टीम को फाइनल में पहुंचाया और शानदार हैट्रिक की थी। अब 27 साल के एम्बापे के पास फ्रांस को लगातार तीसरे विश्व कप के फाइनल में पहुंचाने की जिम्मेदारी है। न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में कप्तान एम्बापे ने 66वें मिनट में फ्रांस को बढ़त दिलाई। उसके बाद स्थानापन्न खिलाड़ी ब्रैडले बारकोला ने फ्रांस की बढ़त 2-0 कर दी। स्टॉपेज टाइम में सेनेगल के इब्राहिम ने एक गोल उतारा, लेकिन एम्बापे ने तुरंत 30 गज की दूरी से दनदनाती किक लगाते हुए मैच में अपना दूसरा और टीम का तीसरा गोल कर दिया। इस मैच से पहले अफ्रीकी टीम सेनेगल के आक्रामक खेल की बड़ी चर्चा हो रही थी। यह वही सेनेगल की टीम है जिसने 2002 के विश्व कप के पहले ही मैच में फ्रांस को हराया था, लेकिन इस बार कोई उलटफेर नहीं हुआ। हालांकि पहले हाफ में सेनेगल के खिलाड़ियों ने फ्रांस को ज्यादा मौके नहीं दिए, लेकिन दूसरे हाफ में मैच की तस्वीर बदल गई। दोनों टीमों के 4 गोल इसी हाफ में हुए और 2 गोल तो 8 मिनट के स्टॉपेज टाइम में हुए। बात अन्य मुकाबलों की करें तो नॉर्वे ने इराक को 4-1 से और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 3-1 से पराजित किया। नॉर्वे के अर्लिंग हॉलैंड विश्व कप के अपने पहले ही मैच में 2 गोल करने में सफल रहे हैं। उन्होंने ग्रुप आई के मैच के 29वें और 43वें मिनट में 2 गोल किए। नॉर्वे 28 साल बाद विश्व कप में खेल रहा है और उसने अपने अभियान की शुरुआत जीत से की है। एक समय मैच एक एक से बराबरी पर था। हॉलैंड के गोल के बाद आयमन हुसैन ने इराक को बराबरी दिला दी थी, लेकिन हॉलैंड ने फिर नॉर्वे को 2-1 से आगे कर दिया। उनके 51 मैचों में 57 गोल हो गए हैं। नॉर्वे का तीसरा गोल लियो ऑस्टीगार्ड ने किया, जबकि स्टॉपेज टाइम में हुसैन के आत्मघाती गोल से नॉर्वे 4-1 से जीतने में सफल रहा। फुटबॉल के पुराने दर्शकों को अर्जेंटीना के माराडोना का 1986 के विश्व कप में हैंड ऑफ गॉड गोल जरूर याद होगा, जब इंग्लैंड के खिलाफ उनके हाथ से लगकर गेंद गोल पोस्ट में चली गई थी और रेफरी इसे देख नहीं सके थे। लेकिन अब तो तकनीक का जमाना है। ऑस्ट्रिया के स्टीफन पॉज के हाथ से गेंद टच करके मार्को अर्नाटोविच के पास चली गई थी, जिन्होंने गोल कर दिया था, लेकिन वीडियो समीक्षा तकनीक यानी वार की मदद से रेफरी ने गोल अमान्य कर दिया। दिलचस्प तो यह है, अंतिम मिनट में अर्नाटोविच ने टीम का तीसरा गोल किया, तब जॉर्डन के खिलाड़ी के हाथ पर गेंद लगने के बाद वार तकनीक की मदद से ही पेनल्टी दी गई थी। ऑस्ट्रिया के लिए श्रिड ने 21वें में अर्नाटोविच ने इंजरी टाइम में गोल किए। 76वें मिनट में जॉर्डन के यजान अल अरब से आत्मघाती गोल हुआ। जॉर्डन का एकमात्र गोल अली ओलवन ने 50वें मिनट में किया था। छठे दिन 4 मैचों में 16 गोल हुए, जबकि एक दिन पहले 4 मैच बराबरी पर छूटे थे। लगता है फीफा विश्व कप में गोलों का मानसून शुरू हो गया है। बिल्कुल, और आज जो मुकाबले खेले जाने हैं प्रतीक, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि पुर्तगाल के CR7 यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को के मैदान में उतरने का भी फुटबॉल प्रेमियों को बड़ा इंतजार है।
1: आज के मुकाबलों की ग्रुप के में पुर्तगाल और DR कांगो की टीमें आमने सामने होंगी। यह मुकाबला ह्यूस्टन के स्टेडियम में खेला जाएगा। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं और टीम के मुख्य कोच रॉबर्टो मार्टिनेज हैं। वहीं दूसरी ओर DR कांगो के कप्तान चांसेल एबाम्बा हैं और उनके कोच सेबेस्टियन डिसाब्रे हैं। DR कांगो 52 वर्षों बाद विश्व कप में वापसी कर रही है। वर्ष 1974 में जायर के नाम से खेलने के बाद यह उनका पहला विश्व कप है। टीम के कोच सेबेस्टियन डिसाब्रे ने कहा है कि उनकी टीम रोनाल्डो की अगुवाई वाली पुर्तगाल से बिना किसी डर के मुकाबला करेगी। वहीं 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने छठे विश्व कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बनने के ऐतिहासिक अवसर के करीब हैं। श्रोताओं, आपको याद दिलाऊं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम विश्व कप में 8 गोल्स हैं, जिन्हें वो आज बढ़ाना चाहेंगे। इसलिए यह मुकाबला विश्व फुटबॉल प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। ग्रुप एल में इंग्लैंड और क्रोएशिया की भिड़ंत होगी। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन हैं और कोच थॉमस टुखेल, जबकि क्रोएशिया की कप्तानी लुका मॉड्रिच कर रहे होंगे। इसी ग्रुप में घाना का मुकाबला पनामा से होगा। घाना के कप्तान जॉर्डन आयु हैं, पनामा की कप्तानी अनिबल गोदोए करते दिखेंगे। दिन के अंतिम मुकाबले में ग्रुप के की टीमें उज्बेकिस्तान और कोलंबिया आमने सामने होंगी। उज्बेकिस्तान के कप्तान एल्डोर शोमुरोदोव हैं, जबकि कोलंबिया

कप्तान जेम्स रॉड्रिगेज। श्रोताओं, विश्व कप 2026 में लगातार रोमांच बढ़ता जा रहा है, नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, दिग्गज खिलाड़ी इतिहास रचने की तैयारी में हैं और हर दिन फुटबॉल प्रेमियों को यादगार मुकाबले देखने को मिल रहे हैं।

0: फुटबॉल के मैदान से चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर और बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच जो दूसरा वनडे मुकाबला खेला जा रहा है और इसमें भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है और 402 रन का स्कोर बनाया है जो कि अफगानिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती है जो कि पहले ही सीरीज में एक मुकाबला हार चुकी है। 3 मैचों की श्रृंखला है, सीरीज दांव पर है और भारतीय टीम की निगाहें सीरीज जीत पर हैं और जितना बड़ा स्कोर बनाया है उससे लग रहा है कि भारतीय टीम ये मुकाबला जीतने में सफल हो सकती है क्योंकि कप्तान शुभमन गिल ने 154 रन की पारी खेली है 110 गेंदों पर जिसमें 22 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। इसके अलावा विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने 125 रन बनाए हैं 89 गेंदों पर जिसमें 14 चौके और 7 छक्के शामिल हैं और दोनों के बीच 224 रन की एक मजबूत साझेदारी हुई है। बात अफगानिस्तान की करें तो उनके जो गेंदबाज हैं नंगोलिया करोटे उन्होंने 76 रन देकर 4 विकेट लिए हैं जबकि राशिद खान 48 रन देकर 3 विकेट लेने में सफल रहे हैं। क्रिकेट की बात को जारी रखते हैं और चलते हैं प्रतीक के पास जो कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप पर जो कल मुकाबले खेले गए उन पर खास रिपोर्ट दे रहे हैं।
1: जी हाँ, कल का पहला मुकाबला साउथहैम्पटन के ऐतिहासिक यूटिलिटी बाउल मैदान पर खेला गया। यह मैच ग्रुप 2 की 2 ऐसी टीमों के बीच था जो टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत की तलाश में थी। न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 150 रनों की एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। उनकी तरफ से स्टार ऑलराउंडर अमेलिया कर ने 36 गेंदों में 45 रनों की सदी हुई पारी खेली। कप्तान सोफी डिवाइन ने भी कप्तानी पारी खेलते हुए मात्र 30 गेंदों में 45 रन कूट डाले। श्रीलंका की गेंदबाजी की बात करें तो श्रीलंका की ओर से सबसे सफल गेंदबाज रही कविशा दिलहारी जिन्होंने 4 ओवरों में 35 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। बात करें श्रीलंका के जवाबी बल्लेबाजी की तो 151 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत अच्छी रही। कप्तान चमारी अथापट्टू ने 27 रन बनाए लेकिन मध्यक्रम में थोड़े लड़खड़ाने के बाद नीलाक्षी डिसिल्वा ने मोर्चा संभाला। नीलाक्षी ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 37 गेंदों में नाबाद 54 रनों की जिताऊ अर्धशतकीय पारी खेली। श्रीलंका ने 19.4 ओवरों में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रीलंका ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार न्यूजीलैंड को मात देकर एक नया इतिहास रच लिया। इस शानदार प्रदर्शन के बाद नीलाक्षी डिसिल्वा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। बात करें कल के दूसरे मुकाबले की तो साउथहैम्पटन के यूटिलिटी बाउल में ही खेला गया यह दूसरा मुकाबला। खराब

0: गेहूं एक मुख्य फसल है और लगभग 3,60,000 क्विंटल का पिछली वर्ष हमने व्यवसाय किया। गुणवत्ता के लिए IFFDC का बीज बहुत ही पॉपुलर है और अभी भी इस साल भी हमारा बहुत अच्छा इंटेक हुआ है। जो रॉ सीड का इंटेक हुआ, रबी सीजन अभी अभी खत्म हुआ, तो रबी सीजन में हमारा हाईएस्ट इंटेक अभी इस बार हुआ है। मुझे खुशी है कि अलग अलग तरह का चैलेंजेस आए इस बार, पर्यावरण के बेटाइम बारिश होना, जब हार्वेस्टिंग का सीजन आया तब बारिश होना, उसके बावजूद भी हमारा इंटेक बहुत अच्छा रहा है और इस बार हमने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट भी 25-26 में हमने अर्जित किया है।
1: माधवी जी, आपने सही बात की और किसानों के लिए बहुत खुशी की बात है कि भाई समय पर बीज उपलब्ध आप करा रही है और आपकी संस्था IFFDC भी

0: आगे बढ़ रही है। तो माधवी जी, क्या ये सभी राज्यों में आप बीज वितरण का काम करते हैं?
1: हमारे मुख्य जो राज्य है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और राजस्थान है। इन राज्यों में हमारा प्रमुखता से काम है और यही हमारा जो फार्मर से जुड़ाव है, और वहीं हम उनको फाउंडेशन सीड्स हम देते हैं और फिर फाउंडेशन सीड से बने हुए उसकी गुणवत्ता के मापदंडों को देखते हुए फिर हम उनसे वो बनी हुई फसल को एरोसीड इनटेक की तरह हम लेते हैं।
0: माधवी, आप बीज के अलावा बहुत सारी महिलाओं को रोजगार के एक तरह के प्लेटफॉर्म देती हैं, एक स्थान देती हैं, वो खुद स्वावलंबी बने, इसके लिए क्या काम किए जा रहे हैं?
1: जिस भी राज्य में हम लोग काम करते हैं तो हम बीजों के साथ और फॉरेस्ट के साथ साथ हम वाटरशेड का भी काम करते हैं, और जिस भी राज्य में हम लोग काम करते हैं तो महिलाओं का विकास करना ये हमारी प्राथमिकता होती है। तो उसमें हम उनको कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए अलग अलग विषयों पे ट्रेनिंग देते हैं, उनको माइक्रो एंटरप्राइजेस डेवलप करने के लिए उनको अलग तरह का प्रशिक्षण देते हैं। अलग अलग पहले है जिसपे हम उनको लगभग 51 तरह के वोकेशनल ट्रेनिंग जो बोलते हैं वो उनको हम देते हैं, जिसमें अगरबत्ती का मशीन उनको देना, मधुमक्खी पालन करना या चूड़ी बनाने का काम करना, जो वो अपना घर का काम करके जो काम कर सकती है तो घर का आमदनी बढ़ाने में भी उनको मदद होती है और घर को छोड़ के भी उनको जाना नहीं पड़ता। तो इस तरह का माइक्रो एंटरप्राइजेस उनके लिए, और फिर उनका बनाया हुआ जो सामान होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा जो सामान बनाया जाता है उसको हम मार्केट प्रोवाइड करने के लिए भी उनको मदद करते हैं। हम इफको की एनुअल जनरल मीटिंग में हो या हमारी एनुअल जनरल मीटिंग होती है या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे उनके स्टॉल्स लगाना, उनको ऑनलाइन कैसे ट्रेडिंग कर पाएंगे वो अपना सामान, उसके लिए हम उनको अलग अलग तरह से प्रशिक्षित करते हैं।
0: माधवी जी, भविष्य की आपकी क्या योजना है और हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: योजना ये है कि हम वाटरशेड में अभी भी और काम करें। मेरा ये कहना है कि किसान भाई हमसे, हमारे फील्ड स्टाफ उनसे मिलते हैं, उनसे जुड़ाव हमारा है, काम करने वाले जो हमारे साथी है वो उनसे मिलते हैं, वो हमसे जुड़ सकते हैं। फाउंडेशन सीड्स हम उनके वितरित करेंगे तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। उन राज्यों में पंजाब, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में भी हम काम कर रहे हैं।
0: माधवी जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हमारे किसान भाई भी इस संस्था से जुड़ सकते हैं और भाई बीज जो बनता है उसके पैसे भी बाजार से अधिक मिलते हैं, और इसके अलावा माधवी जी आपने बताया कि महिलाओं के विकास के लिए भी काम करती हैं और उनको बाजार देने का भी आप एक कदम उठाती हैं। माधवी जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे भाई ये सुन रहे थे बातचीत किसानों के लिए IFFDC की भूमिका, माधवी एम विप्रदास जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IFPDC में, और इनसे बातचीत कर रहे थे PS बाटी।
3: बिल्कुल वंदना बहन, देखिए हम अपने भाइयों को बता दें कि हमारे सरकार ने हमारे किसान भाई बहनों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जिसमें से एक योजना है डेयरी उद्यमिता विकास योजना।
2: जी
3: देखिए, इस योजना का जो उद्देश्य है दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना है, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना है और साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर को बढ़ावा देना है।
2: बिल्कुल, और देखिए जो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है इसे हम नाबार्ड के सहयोग से चलाया जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य डेयरी फार्म स्थापित करना या दूध की गुणवत्ता सुधारना या किसानों को रोजगार देना तो है ही, साथ ही साथ जो हमारे सामान्य या आरक्षित वर्ग के किसान भाई हैं उनको सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। हाँ। वो अनुदान दिया जाता है, तो उस अनुदान के लिए आप हम अपने क्या नाम, कौन सी भैंस, गाय, मुर्गा, मछली, ये कुछ भी जो आप पालना चाहते हैं उसकी आपको पूरी जानकारी देनी पड़ेगी।
3: बिल्कुल वंदना बहन, इसके साथ साथ यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होती है, और इसके माध्यम से आधुनिक पशुपालक पालन तकनीकों को अपनाने, पशुओं के स्वास्थ्य प्रबंधन में सुधार और दुग्ध उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाने पर भी जोर देती है।
2: बिल्कुल, और साथ साथ वर्मी कंपोस्ट यानी कि केंचुई खाद की यूनिट लगाने के लिए भी सरकार सहायता करती है, और जैसे बछड़ा पालन या संकर गायें, अच्छी नस्ल की भैंस गायें, इन सब के लिए हमारी सरकार अपने किसान भाइयों का पूरा ध्यान रखती है।
3: हाँ, और इसके साथ साथ अपने भाइयों को ये भी बताते चले वंदना बहन कि डेयरी उद्यमिता विकास योजना न केवल किसानों की आय बढ़ाती है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत मिलती है। यह योजना दूध उत्पादन प्रसंस्करण और विपणन की पूरी श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने और श्वेत क्रांति को भी आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
2: बिल्कुल, और अगर आप इसका पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो आप अपने कमर्शियल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंक में आवेदन कर सकते हैं, और या इसकी अधिकारी नाबार्ड की अधिकारी वेबसाइट पर भी जाकर पशुपालन विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
3: तो ये तो रही योजना, और अपने भाइयों का कराते हैं मनोरंजन, सुनवाते हैं योगेंद्र कुमार और साथी के आवाज में ये रागनी
2: जी।

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे रागनी योगेश नागर और साथियों की आवाज
1: योगेश
0: में
1: कुमार और
0: जी हाँ, और इसी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम, राम राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता थे तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी का दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और 7 बजने को है। आइए सुनते हैं हिंदी समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। सत्र का विषय था सभी के लिए संतुलित समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। उन्होंने अफ्रीका, लातिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजना का भी प्रस्ताव रखा। श्री मोदी ने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार

0: करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 देशों की पूंजी, भारतीय प्रतिभाओं और ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। श्री मोदी ने सुरक्षित, त्वरित और प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुनिश्चित करने पर केंद्रित कार्य सत्र में भी भाग लिया। इसमें G7 सदस्य देशों, सहभागी देशों और प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने डिजिटल नवाचार के भविष्य के बारे में चर्चा की। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। इसी बीच श्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर भी सभी की नजरें हैं। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडब्रू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग श्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भारत और फ्रांस ने पेरिस में वीवा टेक 2026 में भारत मंडपम के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ओमान में भारतीय दूतावास ने एमटी सेटबेलो हमले में मारे गए दो भारतीय, आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी की पुष्टि की है। हाल ही में एमटी सेटबेलो जहाज में हुए हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। गुजरात में वडोदरा में एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। आज तड़के बांसवाड़ा से सूरत जा रही बस एक खड़े ट्रक से टकरा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में नीदरलैंड्स ने भारत के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत ने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। इधर लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 84 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। शाम के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: भाई बहनों को राम
1: राम।
0: राम। लोकिंदर भाई देखिए हम फिर से उपस्थित हैं अपने भाइयों के लिए जानकारी और मनोरंजन लेकर। और देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम किसान उत्पादक संगठन यानी कि FPO योजना के बारे में।
1: देखिए बिल्कुल हमारी भारत सरकार ने किसान भाइयों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जिस में से एक योजना है किसान उत्पादक संगठन। देखो इस योजना किसानों द्वारा गठित एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को संगठित करके उनकी आय बढ़ाना तथा अन्य कृषि क्षेत्र में बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। भारत सरकार ने किसानों की को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी बाजार तक पहुंच मजबूत करने के लिए 1000 नए FPO के गठन और संवर्धन की योजना शुरू की है।
0: बिल्कुल। और देखिए कृषि लागत कम करने और उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई थी।
1: हाँ हाँ।
0: और देखिए इस योजना का बहुत सारे लाभ हैं, जैसे सामूहिक सौदेबाजी आप कर सकते हैं। हमारे किसान भाई एक समूह बना लें, उसमें कम से कम 10 सदस्य हों और इस समूह में आप बीज खाद और कीटनाशक जो दवाइयाँ होती हैं उसे थोक में खरीद सकते हैं।
1: अच्छा।
0: थोक में सस्ते दामों पर खरीद सकते और अपनी फसल में डाल सकते हैं या सीधे बाजार में बेहतर कीमत पर बेच भी सकते हैं।
1: बिल्कुल। देखिए इस योजना के अंतर्गत हम अपने भाइयों को ये भी बताते हैं FPO के वो प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, वित्तीय सहायता और विपणन सुविधा संबंधी सुविधा प्रदान भी की जाती है वंदावन। और सरकार FPO को प्रारंभिक वर्षों में वित्तीय सहायता की भी उपलब्ध कराती है, जिससे संगठनों को मजबूत आधार मिले और इसके अलावा बैंक ऋण और अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। और सरकारी जो अनुदान है इसमें सब्सिडी जो है वो FPO के गठन, पंजीकरण और शुरुआती 5 वर्षों के संचालन के लिए सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। और प्रशिक्षण के लिए अगर बात करें तो हमारे जो किसान भाई हैं उनकी उन्नत खेती और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए राज्य से बाहर या विदेश में भी जाकर उनका भ्रमण के अवसर मिलता है।
1: बिल्कुल वन्ना बहन, ये तो रही हमारे भाइयों के लिए योजना जिसका नाम था किसान उत्पादक संगठन
0: जी।
1: योजना। और अपने भाइयों को कृषि समाचार दर्शन के अंतर्गत सुनवाते हैं ये जानकारी सरकार के 12 साल के कार्यकाल और जानकारी दे रही है संध्या गुप्ता
0: जी।
2: नमस्कार, कृषि समाचार दर्शन में मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ। वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आइए बात करते हैं उन लाभार्थियों से जो सरकार की जनकल्याणकारी, कृषि कल्याणकारी, रोजगार उन्मुखी और नवाचार से प्रेरित योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं और आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं।
3: जितेंद्र मलिक, ग्राम प्रधान फोना, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से हूं। मैं एक समाज सेवी होने के साथ साथ एक किसान भी हूं। मैं पिछले 2 योजनाओं से अपने ग्राम प्रधान होड़ा में प्रधान पद पर रहते हुए गांव की सेवा कर रहा हूं। मैंने सभी सरकारी योजनाओं का लाभ सभी ग्रामवासियों को दिलवाया है। जैसे गाँव में जिला पंचायत द्वारा करीब 50 लाख रुपए की लागत से अमृत सरोवर का निर्माण कराया गया है। अमृत सरोवर के चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधों का रोपण कराया गया है। चारों ओर पैदल पथ का निर्माण कर उस पर सौर ऊर्जा वाली लाइटें, बेंच बैठने के लिए का निर्माण भी कराया गया है। तालाब में बत्तखों, अन्य जल जीव भी छोड़े गए हैं। पेड़ों की सुरक्षा हेतु चारों ओर तार भी लगाई गई है, जिस पर सुबह शाम गाँव व पास के गाँव वाले भी घूमने के लिए अच्छी स्वच्छ वातावरण, खुली हवा का आनंद लेते हैं। हमारे गांव सरकारी योजनाओं से 100% सीसी युक्त बन गया है और जल निकासी का भी बहुत अच्छा प्रबंध किया गया है। और हमारे गांव में लगभग 1500 परिवार रहते हैं और हर घर जल योजना के तहत 100% घरों को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है और हर घर से कूड़ा कलेक्शन कराकर RCC सेंटर पर भिजवाया जाता है और RCC सेंटर पर केचुआ द्वारा जैविक खाद भी तैयार करा जाता है जो किसानों को उपलब्ध करा दिया जाता है। उसमें खेती में उर्वरक जो है जैसे यूरिया, डाई, उसका इस्तेमाल कम करा जाता है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमारे गांव को 3 बार प्रधानमंत्री पुरस्कार, 1 बार मुख्यमंत्री पुरस्कार से सम्मानित प्राप्त हुआ है। सम्मान के रूप में मिली धनराशि से गाँव में एक डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण कराया गया है ताकि गरीब बच्चों को मुफ्त में अच्छी शिक्षा का लाभ मिल सके। हमारे गांव

0: सभी सरकारी योजनाओं का 100% लाभ दिलाया जाता है। हमारे गांव में किसानों से संबंधित सरकारी योजनाएं जैसे किसान सम्मान निधि, कृषि यंत्र, खेतों में पाइपलाइन का लाभ भी किसानों को दिलाया गया है। किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ भी दिलाया गया है। सोलर पंप भी हमारे गांव में काफी किसानों द्वारा लगाए गए हैं। हमारे गांव में किसान द्वारा जैविक खेती भी की जा रही है और तालाब के चारों ओर 16 लाइटें लगाई गई है और गांव में भी करीब 20-25 सोलर लाइटें लगाई गई है, जिसमें अगर गांव में रात को बिजली गुल हो जाती है तो उसके बाद भी पूरा गांव जगमगाता रहता है। जी, मैं अपनी तरफ से, अपने ग्रामवासियों की तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सरकार ने जो भी सरकारी योजना इतनी चलाई है उसका लाभ मैं तो कहता हूँ हर ग्रामवासियों को, हर गाँव वालों को, हर जिम्मेदार आदमी को इसका उपयोग सही मात्रा में करते हुए हर आदमी को जागरूक करना चाहिए और सरकार की जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मिलता रहे। और इसके मैं एक बार पुनः सरकार का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।
1: हमारा नाम गंगाराम चौहान है, गोरखपुर के रहने वाले हैं। अटल इनोवेशन मिशन यानी नीति आयोग का एक विभाग है, उसमें अटल इनोवेशन मिशन ECIC अटल नवाचार सामुदायिक केंद्र में नवाचारी के पद पर कार्यरत हैं। ये मोदी जी जो अपने कार्यकाल में ये विभाग लाए थे, उसके तहत हम नवाचारी जो भी आइडिया आता है उसको बनाते हैं, खास तौर से कृषि यंत्र बनाते हैं और आजीविका के लिए भी कृषि यंत्र बनाए हैं, नवाचार करते हैं। सुविधाएं में ये है, नवाचारी को एक प्लेटफॉर्म चाहिए तो एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिला है, जो पहले से सोच रहे थे, और मानदेय भी मिलता है, आइडिया को डेवलप करने के लिए संसाधन मिलता है, और हमको रहने खाने पीने की सुविधा दी गई है और आने जाने की सुविधा दी गई है। हमारा केवल आइडिया और शारीरिक श्रम लगता है, उसको बनाने के लिए संसाधन सरकार से मिलता है, रहने खाने पीने की सुविधा सरकार से मिलती है, तो एक पैसा नहीं लगाना है, केवल संसाधन का उपयोग करना है। ये योजना जो केंद्र सरकार का योजना है कि हम जैसे नवाचारियों के लिए प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और मिला भी, धन्यवाद के पात्र हैं।
2: नमस्कार, मैं निशा निरंजन, फाउंडर एंड CEO VN ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंपनी मशरूम पे काम करती है और हम मशरूम से कई सारे उत्पाद बनाते हैं। किसानों को मशरूम की खेती के लिए ट्रेन करते हैं। 2022 में मुझे RKVY रफ्तार की एक ग्रांट मिली थी, जिससे हमें काफी हेल्प मिली। जो फंड हमें मिला था उसको हमने डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट्स बनाने में, मशीन लगाने में और किसानों को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया, और उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि हम काफी अच्छे से अपने किसानों के साथ ऑनबोर्डिंग कर पाए, उनको चीजों को समझा पाए और उनके लिए बेसिक रॉ मटेरियल अपनी फैसिलिटी में तैयार कर पाए। और उसकी वजह से आज हमारे पास लगभग 10,000 किसान हैं पूरे इंडिया में जो हमसे कनेक्टेड हैं, जो हमारे लिए मशरूम उगाने के लिए तत्पर हैं, और हम अब धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहे हैं। रिसेंटली अभी 2026 में ही मुझे RKVY का एक दूसरा ग्रांट मिला है जो एक्सपेंशन ग्रांट है। पहले हमें सीड ग्रांट मिला था, अब हमें एक्सपेंशन ग्रांट मिला हुआ है। तो उस ग्रांट का अभी हमारा टारगेट ये है कि हम जो अब बेहतरीन उपकरण को लेके आएंगे और उनसे हम जो प्रोसेसिंग का काम है और जो मार्केटिंग का काम है, ये सब हम प्लान कर रहे हैं। तो मशरूम एक कह सकते हैं भविष्य की खेती है, क्योंकि इसका कार्बन इमिशन इंडेक्स काफी कम है। दूसरा, इसको उगाने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं चाहिए होते, और ये फार्मर और लैंडलेस फार्मर्स जो हैं, जो घरों में रह रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत बेहतरीन व्यवसाय है। सरकार से बस ये चीजें हैं कि जिस तरीके के सपोर्ट हमें मिलते हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट हमारे लिए डेडिकेटेड मेंटोरशिप प्रोग्राम चलाए, तो मैं चाहती हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि कुछ इस टाइप के इनिशिएटिव रन किए जाएं जो इनको इन्फॉर्मेशन दें कि क्या क्या स्कीम्स अवेलेबल है और क्या क्या वो उस चीज का फायदा ले सकते हैं। जैसे मैंने निधि प्रयास जो है DST की स्कीम है, उसके अंडर भी मुझे ग्रांट मिला हुआ है। वो डेडिकेटेडली ग्रांट हमें मिला था प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो ये 10 लाख का एक स्कीम होता है उनका, वो डेडिकेटेडली प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए ही रन करते हैं। तो वो एक स्कीम भी मुझे मिला हुआ है, और क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है तो किसानों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बट आरकेवीवाई और इस टाइप की जो स्कीम्स हैं उसमें किसान

0: आराम से अप्लाई कर सकते हो, और उनके लिए डेडिकेटेड स्पेस भी बनाई गई है इन स्कीम्स में। जो स्टूडेंट्स होते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं मशरूम सीखने के लिए, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं और उनको प्रोजेक्ट बनाना ये सब बहुत मुश्किल नहीं होता, तो उनको हम डेडिकेटेडली बैठा के ट्रेन करते हैं कि ये स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की एंड आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने वो बेनिफिट लिए हैं। सरकार हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रही, क्योंकि मैंने बाहर भी काम किया है देश के, एंड जिस टाइप का इकोसिस्टम हमारे देश में है, मुझे गर्व है कि हमारे पास हर पॉइंट पे सपोर्ट करने के लिए एक इकोसिस्टम बिल्ड किया गया है। और वहां पे जो इनेबलर्स हैं, जो सिखाने वाले हैं, वो काफी कीन होते हैं हमको सिखाने और समझाने के लिए। मतलब गवर्नमेंट से जो हम सीख कर सकते हैं, एक बहुत बड़ी हेल्प है।
1: मैं अशोक मनवानी, इंडियन सॉल कल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। हमें भारत सरकार के आरकेवीआर अवतार कृषि मंत्रालय भारत सरकार, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सहयोग से हमें 25 लाख रुपए की ग्रांट 2020-21 में प्राप्त हुई, जिससे हम भारत सरकार का ये ग्रांट जो है वहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इसके सहयोग से मोती उत्पादन यही कर रहे हैं। इसमें हमने ऑर्गेनिक पर्ल डेवलप किए हैं, नेचुरल पर्ल फार्मिंग डेवलप किए हैं, जिसे भारत के कई किसान और स्टूडेंट इसको लाभ लेते हैं। हमारे इस फंड से हमने टूल्स बनाए और नए नए रिसर्च किए, 10 पेटेंट प्राप्त किए और अन्य अन्य विभागों की सीपियों से हमने बहुत सुंदर सुंदर मोती बनाए हैं। हम लोग भारत के पहले स्टार्टअप हैं। हम पिछले 28 सालों से इसी कार्य को कर रहे हैं और भारत सरकार की ऐसी योजनाओं से जो नवाचारी किसान हैं उनको बहुत लाभ मिलता है। हम ऐसी योजनाएं जो इनोवेटर्स के लिए, ग्रास रूट के लिए बनाई जा रही हैं, बहुत लाभप्रद है और इसका मैं जीता जाता सबूत हूँ। तो मैं किसानों से कहूंगा कि ऐसी योजनाओं पे ध्यान दें और अपने नवाचार को आगे बढ़ाएं। जय हिंद।
2: मेरा नाम मनोज है, मैं दिल्ली में काम करता हूँ, छोले कुलचे पराठे लगाता हूँ। मैंने पीएम स्वनिधि का लाभ लिया था और 10,000 लिए थे पहले, फिर उसके बाद 20,000 लिए थे, दोनों लोन चुका दिए। उसके तहत मेरा काम ठीक चलने लगा है। मैं इसके लिए सरकार के लिए धन्यवाद करता हूँ।
3: नमस्कार जी, मैं दिनेश बोल रहा हूँ। मैं पीएम स्वनिधि का लाभार्थी हूँ। मुझे पीएम स्वनिधि से 50,000 रुपए मिले थे और मैंने अपना स्टॉल लगाया है दिल्ली में, व्यापार सही हुआ है और मैं इस योजना के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ।
4: मेरा नाम पवन कुमार है, मेरा गांव गौरोट है, जनपद अलीगढ़ है। PMEGP मैंने लाभ ले लिया मधुमक्खी पालन का, बस सब्सिडी मिली थी मेरे को 35%। मैंने मधुमक्खी की पहले ट्रेनिंग दी है, जो है हमें इस योजना से लाभ मिला और हम इस काम को और बढ़ावा देना चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं जी हम सरकार का।
5: मैं अंकुर चौधरी, विलेज राजगढ़, पोस्ट गढ़ी बुक्त, डिस्ट्रिक्ट शामली। मैं PMEGP के अंतर्गत मधुमक्खी पालन से अनुदान लिया है और मैं पिछले 2 साल से मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ट्रेनिंग ली, कार्य शुरू किया, 50 बॉक्स से मैंने कार्य किया था। वर्तमान में मेरे पे 200 बॉक्स है। मुझे केवल प्रशिक्षण प्राप्त करना था, मैं PMEGP के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। जो वर्तमान में मैम कोई आती है तो योजना का लाभ लेना चाहेगी, भारत सरकार का बहुत सराहनीय कार्य है, हम बहुत खुश है। भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद।
6: नमस्कार, मेरा नाम ध्वज बालियान है, मैं जिला मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। मैं मधुमक्खी का प्रशिक्षण देता हूँ और इसके साथ साथ ही किसानों को जागरूकता का भी काम करते हैं कि भी कैसे हमें कैसे प्रशिक्षण लेकर अपना काम आगे बढ़ाना चाहिए, हॉर्टिकल्चर से हमें क्या अनुदान मिलता है जिससे हम अपना व्यवसाय आगे बढ़ाए, और खादी ग्राम योजना के अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं किसानों को मिलती है और किस तरीके से वे अपने काम की अच्छे से स्टार्टिंग कर सकते हैं जिससे हमारा नौजवान बेरोजगार के ना रहे और आने वाले समय में वे उससे अच्छा लाभ कमाए। इस प्रकार भारत सरकार की निम्न योजनाएं हैं जिससे हम जनता से सीधा संवाद करते हैं और उन्हें इस प्रोग्राम के बारे में बताते हैं, जिससे बहुत किसान भारतवर्ष के योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे किसान मधुमक्खी पालन से शहद और जिससे किसानों की फसल की पैदावार भी बढ़ती है और किसान इस पर सब्सिडी देती है, जिस योजना के तहत किसान बड़े खुश है और इस योजना का लाभ उठाते हुए वे अपना कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो किसानों के खाते में सीधा अनुदान देते हैं, जिससे बीच में बिचौलिया भी नहीं होता और जिससे किसान पैसा लेकर अपना अच्छे तरीके से अपना काम और व्यवसाय आगे चला पाता।
7: नमस्कार, मैं नीलम यादव, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट, मेरे गांव का नाम ढाणी चितर से है ना, और मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हूँ, स्वयं सहायता समूह, जो हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई हूँ। सन 2017 में मैंने अपने ग्रुप की स्थापना की थी और जिसका नाम था देव महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप। जब मैंने सन 2017 में इसकी स्थापना की तो मैं मतलब कि NRLM से जुड़ गई, और उसके जुड़ने के बाद मुझे भारत सरकार से रिवॉल्विंग फंड मिला 10,000 का, जिससे महिलाओं की काफी मदद हुई। और उसके बाद हमें 6 महीने बाद सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक से 50,000 सरकार की तरफ से हमें लोन मिला, जो कि हमें किस्तों में चुकाना पड़ रहा था। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बहुत ज्यादा फायदे है, इसमें हम अपनी 100 रुपए 200 रुपए की हम बचत करते हैं, और जिसमें हम सभी महिलाएं जो 10 महिलाएं होती है वो जमा करती है। सरकार ने हम महिलाओं के लिए जैसे कि जियो खुले हुए है, जैसे कि रूट सेट सेंटर हो गया, उससे हमें ट्रेनिंग ली अचार पापड़ मसाले की, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थी। हमारे यहाँ पे गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र है, जिससे भी वहाँ महिलाओं को ट्रेनिंग मिलती है, वहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आर्य प्रोजेक्ट से मतलब कि महिलाओं को जोड़ते हैं। आर्य प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि महिलाओं जब 21 दिन की वहाँ ट्रेनिंग लेती है 10 महिलाएं, तो उनको अपना काम चलाने के लिए कि हो गई ओवन हो गई सीलिंग मशीन हो गई, इस तरह का सामान दिया जाता है, जिससे महिलाएं जो गांव की गरीब महिलाएं जो सामान नहीं खरीद सकती, उनको कम से कम 1,00,000 रुपए का सामान दिया जाता है और वो अपना मतलब कि कार्य है उसे शुरू कर सकती है। दूसरा कृषि विज्ञान केंद्र में होता है कि महिलाएं अपना खुद की जो घर की साग सब्जियां है, जो किचन गार्डन करना चाहती है, उनको भी सरकार की तरफ से बीज दिए जाते हैं, पेड़ पौधे दिए जाते हैं। और जो महिलाएं जो पशु रखती है, पशु रखने के बाद जैसे कि गोबर हो गया, तो उसको भी सरकार की तरफ से काफी सहायता मिलती है। मेरे को उस टाइम 10,000 रुपए मिले थे, जिससे मैंने मतलब कि केचवे मिले थे और टीन सेट का खर्चा मिला था, और जिसे मैंने अपना वर्मिंग कंपोस्ट का काम शुरू किया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपनी भारत सरकार का, हरियाणा सरकार का, जिन्होंने महिलाओं को इतना सपोर्ट किया और आज महिलाएं इतनी आगे बढ़ रही है। धन्यवाद।
8: कृषि समाचार दर्शन का यह अंक यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम संयोजक शिवनंदन लाल के साथ मैं संध्या आपसे विदा लेती हूँ। अनुमति दीजिए, नमस्कार।
9: अभी हमारे भाई सुन रहे थे कृषि समाचार दर्शन संध्या गुप्ता के साथ, सरकार के 12 साल के कार्यकाल का समय। इसमें संध्या गुप्ता ने हमारे किसान भाइयों से बातचीत की थी और योजनाओं का उन्होंने किसानों ने बताया कि उनको कौन सी योजना से क्या लाभ हुआ।
10: बिल्कुल, ये तो रही कृषि समाचार दर्शन की अंतर्गत जानकारी, और अपने भाइयों को कराते हैं, मनोरंजन सुनवाते हैं उदयपाल से ये उपदेश।

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे उदयपाल की आवाज में ये उपदेश, और इसी के साथ हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम राम, राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। समय हुआ है 7:30। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गजल।

0: कार्यक्रम गजल यहीं संपन्न होता है। मैं आपकी दोस्त प्रिया अब आपसे विदा लेती हूँ। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। शाम के 7:45 होने को है। अब कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
5: TLI है ना।
6: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।
7: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक पेड़ मां के नाम दिल्ली मेगा ट्री प्लांटेशन अभियान 2026 की शुरुआत की। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली में स्वच्छता अभियान तेज,

0: सफाई अभियान में कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया और दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी से जुड़े अंतर्राज्यीय टेरर मॉड्यूल के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस महीने की 22 तारीख से एक पेड़ मां के नाम दिल्ली विशाल वृक्षारोपण अभियान 2026 की शुरुआत की घोषणा की। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि 70 लाख पौधे लगाने के साथ इस पहल का लक्ष्य दिल्ली के हरित क्षेत्र को बढ़ाना, प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को मजबूत करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत दिल्ली सरकार द्वारा पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे ग्रीन वॉरियर्स के रूप में इस पहल से जुड़े और हरित दिल्ली के निर्माण में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की एक नई गौरव गाथा लिखी गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि विश्वास, विकास और जन कल्याण के संकल्प ने देश को तेजी से विकसित भारत की ओर अग्रसर किया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भारतीय सुरक्षा बलों ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सैकड़ों आतंकियों को मार गिराया। इसी बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज आगामी मॉनसून से पहले बाढ़ नियंत्रण और जल जमाव को रोकने की तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने बाढ़ नियंत्रण आदेश 2026 जारी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को सक्रिय रूप से काम करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मॉनसून के दौरान दिल्ली के निवासियों को कोई परेशानी न हो। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि जलजमाव वाले इलाकों में पंपों की संख्या बढ़ा दी गई है और जलजमाव की आशंका वाले हर चिन्हित स्थान के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नालियों की समय पर सफाई, मोबाइल पंपिंग सिस्टम की उपलब्धता और सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम के जरिए 24 घंटे सातों दिन निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टरों के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के भी निर्देश दिए। इस निर्णय का स्वागत करते हुए दिल्ली के गृहमंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह नीति आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
1: दिल्ली को विकसित भारत की राजधानी बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम, जहां कोई भी नागरिक नारकीय जीवन नहीं जिएगा झुग्गियों में। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आदरणीय गृह मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में वो पॉलिसी तय कर दी है, जहां झुग्गी में रहने वाले मेरे बहन भाई अपने बच्चों को सुंदर मकान में रहते हुए बढ़ते हुए देखेंगे और हम सब मिलकर विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने के लिए अपना योगदान देंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
2: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: दिल्ली में कल से इस महीने की 20 तारीख तक शहर भर में 39 जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। शिविरों में नागरिकों को केंद्र और दिल्ली सरकार की योजनाओं की जानकारी, सेवाएं तथा सहायता एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर

0: दिल्ली में स्वच्छता अभियान तेज किया गया है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज मॉडल टाउन क्षेत्र में सफाई अभियान में हिस्सा लिया। श्री सिरसा ने लोगों के साथ मिलकर पार्कों और सार्वजनिक स्थलों की सफाई की तथा स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए स्वच्छता जरूरी है और इसे जन आंदोलन का रूप दिया गया है। श्री सिरसा ने नागरिकों से अपील की कि वे अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें और इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं।
1: जब से प्रधानमंत्री जी ने अपनी इस सेवा को संभाला है, तब से स्वच्छता के ऊपर उनका बहुत जोर। जन कल्याण के कामों के साथ साथ स्वच्छता पे बड़ा फोकस है इस सरकार। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार आज पूरी दिल्ली में स्वच्छता अभियान चल रहा है। हमारी सारी पार्टी के संगठन के लोग और हम सब ने मिलकर, निगम पार्षद, MLA, सभी लोगों ने मिलकर एक बड़े स्वच्छता अभियान को यहाँ पे किया।
0: वहीं दिल्ली में विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिदुड़ी के साथ कालकाजी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। श्री मिश्रा ने कहा कि स्वच्छ भारत का संकल्प आज जन आंदोलन बन चुका है और इसी दिशा में दिल्ली भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने और अधिक से अधिक पौधारोपण करने की अपील की।
2: भारत को महाशक्ति बनाने का जो दौर था प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में, वो संभव होना शुरू हुआ और उसमें जो उन्होंने एक संदेश दिया स्वच्छता का, उसी संदेश पे अमल लाते हुए आज पूरी दिल्ली भर में, देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी गण, संगठन के लोग, सरकार के लोग सब मिलकर ये स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और हम यहाँ पर आए हुए हैं।
0: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने आज राजधानी के सभी 256 मंडलों में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान श्री मल्होत्रा ने कहा कि राजधानी को स्वच्छ रखने के लिए सभी नागरिकों को कूड़ा इधर उधर न फेंकने का संकल्प लेना होगा। उन्होंने नगर निगम के सफाई कर्मियों के कार्य की सराहना की। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने अभियान के माध्यम से सेवा ही संगठन के संदेश को दोहराते हुए नागरिकों से स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने की अपील की। अभियान में विजेंद्र गुप्ता, मनोज तिवारी, रामवीर सिंह बिदुड़ी सहित अन्य सांसद और मंत्री शामिल हुए। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने आज नजफगढ़ स्थित साईं बाबा मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि स्वच्छता एक स्वस्थ समाज और विकसित राष्ट्र की आधारशिला है। श्री सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन आज जन आंदोलन बन चुका है और जो नागरिकों को स्वच्छता और जन भागीदारी के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल में देश ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर राष्ट्र की पहचान मजबूत की है। श्री सिंह ने दिल्लीवासियों से अपने क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में योगदान देने की अपील की।
3: स्वच्छता तो प्रधानमंत्री जी का एक दिख है कि सुंदर भारत, साफ भारत, स्वच्छ भारत रहे, उसी के प्रयास, उसी मार्गदर्शन में हम अपने प्रधानमंत्री जी के आज इस मंदिर के प्रांगण में आके स्वच्छता का काम कर।
0: केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी कल नई दिल्ली में खाद्य प्रबंधन के लिए स्मार्ट भंडारण प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। तकनीक आधारित इस प्रणाली का उद्देश्य भंडारण प्रबंधन पद्धतियों और कार्य प्रणालियों को मजबूत करना है। इस प्रणाली के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन सहित उन्नत प्रौद्योगिकों को शामिल किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि यह पहल डिजिटल इंडिया, भारत AI मिशन, PM गतिशक्ति और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पाकिस्तान स्थित ISI हैंडलर शहजाद भट्टी से जुड़े 8 सदस्यों वाले एक अंतर्राज्यीय टेरर मॉड्यूल के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन गैंग बस्ट 2.0 के दौरान इस मॉड्यूल के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों को दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने, पोस्टर के जरिए पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स का महिमामंडन करने और ISI समर्थित संगठन तहरीक ए तालिबान हिंदुस्तान का प्रचार प्रसार करने का काम सौंपा गया था। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 5 हथियार, शहजाद भट्टी नेटवर्क के सदस्यों से जुड़े पोस्टर और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जांच से पता चला है कि आरोपी एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के जरिए शहजाद भट्टी नेटवर्क के सदस्यों के सीधे संपर्क में थे।

0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी में पॉक्सो अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर एक समीक्षा बैठक की। बैठक में दिल्ली पुलिस आयुक्त, महिला और बाल विकास विभाग के सचिव तथा शिक्षा निदेशक शामिल हुए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि बैठक में दिल्ली के सभी स्कूलों का व्यापक ऑडिट कराने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों और दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन हो रहा है या नहीं। श्री संधू ने शिक्षा विभाग के नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है। यह दिवस मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चारागाह पहचान, सम्मान और पुनर्स्थापन। यह विषय चारागाहों के आर्थिक, पारिस्थितिकीय और सांस्कृतिक महत्व को अधिक मान्यता देने, संरक्षकों के प्रति सम्मान दिखाने और खराब हो चुके चारागाहों को पुनर्स्थापित करने के लिए अधिक निवेश की जरूरत की और संकेत करता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
1: लैंड रेस्टोरेशन इतना इम्पोर्टेंट काम है कि लोगों के जीवन में नई आशा, समृद्धि और जीवन की नई संभावनाएं लेकर के आता है और इसलिए आज इस समय की आवश्यकता है कि हम विकास और इन चीजों को, जैव विविधता के संरक्षण को, पशुधन आधारित आजीविकाओं को, जल चक्र के विनियमन को, कार्बन के संचयन को और जलवायु में फ्लेक्सिबिलिटी को लाकर हम एक भूमिका को निभाएं।
0: राजधानी में आज धूप रही और हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने तथा धूप रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक पेड़ मां के नाम दिल्ली मेगा ट्री प्लांटेशन अभियान 2026 की शुरुआत की। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली में स्वच्छता अभियान तेज, सफाई अभियान में कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया और दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी से जुड़े अंतर्राज्यीय टेरर मॉड्यूल के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: डॉल्फिन के ऐसे गाने के साथ कार्यक्रम को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली का एयरलाइट न्यूज 24/7 चैनल है और अब से थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: तब तक के लिए मुझे
2: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
3: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।

0: एक्सेलेंस मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
1: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की सातवीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
4: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
2: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देशभर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल

0: में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
1: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarers' safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence and technology cooperation at inauguration of India Pavilion at Viva Tech 2026 in Paris. Railways approves multiple projects worth over 1,200 crore rupees to improve connectivity and safety. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. And in men's cricket, Afghanistan chase target of 403 runs set by India in second ODI of 3-match series in Lucknow. A crucial bilateral meeting was held between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump at Evian, France on the sidelines of G7 summit this evening. During the talks, issues of seafarers' safety and opening of Strait of Hormuz figured prominently. Prime Minister Modi commended President Trump for the progress in peace efforts in West Asia. The Prime Minister said that India has consistently emphasized the importance of the freedom of navigation and all should work together to place a particular emphasis on it. Mr. Modi added that lakhs of Indian seafarers

0: एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी दोतरफा मीटिंगें की। पेरिस में विवाटेक 2026 के दौरान इंडिया पवेलियन की इफ्तिताही तकरीब में भारत और फ्रांस ने जिद्दत तराजी, मसनूई जहानत और तकनीकी ताउन के फरोग के अजम का इयादा किया। रेलवे ने कनेक्टिविटी और मुसाफिरों की हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई प्रोजेक्टों की मंजूरी दी। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों और मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और मर्दों के क्रिकेट में लखनऊ में 3-1 रोजा बैन अलाक्वामी मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 403 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। फ्रांस के शहर रेवियों में G7 सरबराह इजलास 2026 के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक अहम दोतरफा मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान वजीर आजम मोदी ने मगरबी एशिया में अमन के कयाम की कोशिशों में होने वाली पेशरफ्त पर सदर ट्रंप की तारीफ की। वजीर आजम ने कहा कि भारत हमेशा समंदरी रास्तों पर जहाजों की आमदोरफ्त की आजादी की अहमियत पर जोर देता रहा है और तमाम मुल्कों को इसके तहफ्फुज़ के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वजीर आजम ने मजीद कहा कि दुनिया के मुख्तलिफ समंदरों में बहरी तिजारत के शोबे से वाबस्ता लाखों भारतीय मल्लाह अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और उनकी सलामती भारत के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मसनूई जहानत AI के महफूज तेज रफ्तार और मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के मौजू पर मुनक्किदा वर्किंग लंच में शिरकत की। इस इजलास में G7 के रुकन मुल्कों, शराकतदार ममालिक और मसनूई जहानत की मारूफ कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान शरीक हुए, जहां डिजिटल इख्तरा के मुस्तकबिल पर ख्यालात का तबादला किया गया। वजीर आजम मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स ने इलाकाई और आलमी हालात व वाकयात पर बातचीत की, जिसमें मगरबी एशिया की सूरत हाल और रूस यूक्रेन तनाजा भी शामिल था। दोनों रहनुमाओं ने दोतरफा ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायजा लिया और भारत जर्मनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में नई रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। इस सिलसिले में चांसलर मर्स के भारत के कामयाब दौरे और रवां साल भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती मुआहदे के मुजाकरात की तकमील का भी जिक्र किया गया। चांसलर मर्स ने वजीर आजम मोदी को इस साल जर्मनी में मुनक्किद होने वाली 8वीं भारत जर्मनी बैन हुकूमती मुशावरत में शिरकत की दावत दी। वजीर आजम मोदी ने सरबराह इजलास के मौके पर यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डेर लेयन और यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो द कोस्ता के साथ भी मीटिंग की। पेरिस में जारी विवाटेक 2026 में भारतीय पवेलियन के इफ्तिताह के मौके पर भारत और फ्रांस ने इख्तराम, मसनूई जहानत और टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन के अपने अहद को दोहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल और फ्रांस की मसनूई जहानत और डिजिटल उमूर से मुतालिक वजीर एनेली हेनाम्फ ने दोनों ममालिक के माबैन कलीदी शराकतदारी की बढ़ती हुई अहमियत को उजागर किया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इख्तराकारों और स्टार्टअप से खिताब करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुएल मीखों के जरिए भारत फ्रांस इख्तरा के साल 2026 के ऐलान के जरिए भारत और फ्रांस की शराकतदारी मजीद मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि मसनूई जहानत AI के दौर में भारत को कई नुमाया फवायद हासिल हैं, जिनमें नौजवान आबादी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी स्टेम के माहिरीन की बड़ी तादाद, मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा और जमहूरी तर्ज हुक्मरानी शामिल हैं। उन्होंने भारत फ्रांस इख्तरा के साल का जिक्र करते हुए कहा कि स्टार्टअप्स और तहकीकी इदारों के जरिए बढ़ता हुआ तआवुन नई राहों और मौके को जन्म दे रहा है। قابل ذکر ہے کہ ویوا ٹیک 2026 میں قائم انڈیا پیویلین قومی سطح کے سب سے بڑے پیویلین میں شمار ہوتا ہے، جہاں بھارت کے تیزی سے فروغ پاتے ہوئے اسٹارٹ اپس اور اختراعی ماحولیاتی

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमिया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि

0: उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेयरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सीलेंस, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ।
1: श्री मोदी ने भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। श्री मोदी ने कहा कि भारत सदैव शांति के पक्ष में रहा है और मानवता के मूल्यों को सर्वोच्च मानता है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ मुलाकात की। पश्चिम एशिया की स्थिति और यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाओं के बारे में भी चर्चा की। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ भी बैठक की। G7 शिखर सम्मेलन के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सुरक्षित, समावेशी और मानव हित में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि AI शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन बच्चों को गलत सूचना, डीप फेक और साइबर खतरों से बचाने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय जरूरी हैं। इस बीच G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई हैं। इन घोषणाओं में संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवा टेक 2026 में भारत मंडप का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एनेली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में आज शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 रेलवे स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देशभर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में होगा। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 114 रन पर आउट हो गई। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is the Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi held a bilateral meeting with US President Trump on the sidelines of the G7 summit in Avignon, France. The two leaders reviewed the progress made under the India-US Compact initiative, including cooperation in defense, trade, energy and people-to-people ties. Both sides reaffirmed their commitment to strengthening the India-US comprehensive global strategic partnership and promoting peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. The Prime Minister reiterated his appreciation for President Trump's efforts in ensuring the restoration

यह आकाशवाणी दिल्ली का एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। मध्य रात्रि के 1:10 और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त कीर्ति। कार्यक्रम गीत सुनहरे लेकर हाजिर हूं। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं पुराने फिल्मी नगमे, जी हां, ओल्ड फिल्म सॉन्ग्स ऑफ गोल्डन एरा। तो शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ, जिसमें शायद गायक ये कहना चाह रहे हैं कि तुम आज मिले हो। जी, हम तो अधिकतर मिलते रहते हैं, पर ठीक है, इस गीत के जरिए हम आज मिलते हैं।

इस गीत के बाद अब आपको सुनवाते हैं 1970 की क्लासिक हिंदी फिल्म गोपी का एक बेहद लोकप्रिय और सदाबहार भजन। इस गाने में भगवान राम और सीता माता के माध्यम से कलयुग में समय का वर्णन किया गया है और आवाज आप सुनेंगे महेंद्र कपूर की। इसमें संगीत जो पिरोया है वो है कल्याण जी आनंद जी ने। तो आइए सुनते हैं राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखा गया

अगला गीत आपके लिए आ रहा है, फिल्म है महबूब की मेहंदी, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत से पिरोया है। आइए आपको सुनवाते हैं ये गीत जो लिखा है आनंद बख्शी ने।

अगली आवाज सुरों की कोकिला, लता मंगेशकर की। जी हाँ, सुनवाने जा रहे हैं आपको संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

क्या जुगलबंदी है इस गीत में. जी हाँ, आशा भोसले, माफ कीजिएगा, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की आवाजों में आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत फिल्म शान से. आनंद बख्शी के लिखे बोल और आरडी बर्मन का दिया संगीत. अब अगले दौर में चलते हैं और आपको सुनवाते हैं फिल्म शोर से ये गीत लता मंगेशकर, मुकेश और अन्य आवाजों में.

अब आपको ऐसा गीत सुनवा रहे हैं जिसमें आप बयां करेंगे किसी को अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कि आप हमारे दिल के पास रहते हैं। जी हाँ, आप समझ ही गए हैं। फिल्म ब्लैकमेल से ये अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ है।

अब गीत सुनहरे में समय है आखिरी गीत का, और मोहम्मद रफी और आशा भोसले इस गीत के जरिए मैं आपको कहना चाह रही हूं जो आपकी दिल की बातें हैं। जी हाँ, आप यही कहना चाहते हैं ना कि हम अभी ना जाएं छोड़कर।

अभी अभी तो नहीं आए, बहुत देर हो गई, लेकिन अब जाना होगा क्योंकि गीत सुनहरे कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो चुका है। अब अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत।

0: अब समय है समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पेरिस पहुंच गए हैं। दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया और कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता तथा यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।

0: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
1: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की तथा व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी पेरिस में वीवाटेक शिखर सम्मेलन सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी है। गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी गई है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दे दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास दिए जाने को प्राथमिकता दी जा रही है। FIH प्रो लीग हॉकी मुकाबले में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। भारत की ओर से मनदीप सिंह, शिलानंद लाकड़ा और नीलकांत शर्मा ने गोल किए। इस मैच में मनप्रीत सिंह ने अपना 413वां अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेलकर भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। फीफा विश्व कप 2026 में ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल और DR कांगो के बीच मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। पुर्तगाल के लिए जोआओ नेवेस ने 6ठे मिनट में गोल किया, जबकि DR कांगो ने योआने विस्सा ने पहले हाफ के अंतिम मिनट में बराबरी का गोल दागा। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप मैच शुरू करने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड की टीम 114 रन पर आउट हो गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi has reached Paris after successfully concluding his highly significant 2-day visit to Evian, France, where he attended various sessions of the G7 summit and held bilateral meetings with several world leaders on the sidelines. In a social media post, Mr. Modi described his interactions at the summit as productive and said he held a series of meaningful meetings and exchanges with world leaders. The Prime Minister said that he presented India's positions and efforts on key areas of governance and policy making. He also emphasized the need to work closely with the Global South for global prosperity. The major highlight of the day

0: दोस्तों इसी के साथ फिल्म गीतों का जो कार्यक्रम गीत बहार नॉनस्टॉप म्यूजिक आप सुन रहे थे यहीं समाप्त होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। फिलहाल रात्रि के 3 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पेरिस पहुंच गए हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया और कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्

0: शुल्ट्स, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो क्रोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की तथा व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री आज पेरिस में वीवाटेक शिखर सम्मेलन सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद भी करेंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को स्वीकृति दे दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
2: दो प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। थर्ड प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर फोर्थ प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आर कंट्री।
0: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। फीफा विश्व कप 2026 में ग्रुप एल के मुकाबले में इंग्लैंड क्रोएशिया से 3-2 से आगे है। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। वहीं ग्रुप के में पुर्तगाल और DR कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मुकाबले में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। भारत की ओर से मनदीप सिंह, शीलानंद लाकड़ा और नीलकांत शर्मा ने गोल किए। इस मैच में मनप्रीत सिंह ने अपना 413वां अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेलकर भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। चीन के गुयांग में चल रहे विश्व मुक्केबाजी कप में भारत के निखिल, दीपक और स्नेह ने अपने अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। महिला T20 विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi has reached Paris after successfully concluding his highly significant two-day visit to Evian, France, where he attended various sessions of the G7 summit and held bilateral meetings with several world leaders on the sidelines. In a social media post, Mr. Modi described his interactions at the summit as productive and said he held a series of meaningful meetings and exchanges with the world leaders. The Prime Minister said that he presented India's positions and efforts on key areas of governance and policy making. He also emphasized the need to work closely with the Global South for global

वाकई मैं श्रोता हूँ। जगजीत सिंह साहब का गजल गायकी में तो कोई जवाब ही नहीं था, ना ही गजल गायकी में उनका कोई सानी था। शायद यही वजह है कि उन्हें गजलों का बेताल बादशाह कहा जाता था। और वाकई में आज भी गजल में के गजलों के मामले में उनका कोई भी मुकाबला नहीं है। ऐसे ही एक गायक थे गजल गायकी में, जिन्होंने गजल गायकी में अपना एक अलग मुकाम बनाया था और गजलों की दुनिया में उन्होंने भी अपना नाम सदा के लिए अमर कर लिया था, और वो थे हम सब के प्यारे पंकज उधास साहब। आइए सुनते हैं उनकी आवाज़ में ये दो मशहूर गजलें।

वाकई में श्रोताओं, पंकज उधास साहब की गजल गायकी में एक अलग ही अदा थी। आइए सुनते हैं अगली गजल आवाज की जादूगर हरिहरन की मधुर आवाज में।

श्रोताओं, ये गजल अभी आपने सुनी आवाज के जादूगर हरिहरन की मधुर आवाज में। आइए सुनते हैं अगली गजल चित्रा सिंह की मधुर आवाज में। श्रोताओं, चित्रा सिंह ने भी गजल गायकी में अपना एक अलग मुकाम बनाया था, एक अलग पहचान बनाई थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह जी की पत्नी थी। आइए सुनते हैं उनकी आवाज में ये दो मधुर गजलें।

0: इसी के साथ श्रोताओं, आज का गजलों और गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। सुबह के 4 बजे हैं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है अर्चना।

आज के इस कार्यक्रम में हम आपको श्री कृष्ण भक्ति रचनाएं सुनवा रहे हैं। पहले प्रस्तुत है त्यागराजा की एक तेलुगु रचना, सुनिए सहगान रूप में।

अब हम आपको श्री स्वाति तिरुनाल की एक भक्ति रचना सुनवा रहे हैं, जिसे स्वर दिया है महाराजापुरम संतानम में।

0: अब आज का अर्चना कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। समय हुआ है सुबह के 4:20। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 18 जून सन 2026। सुबह के 4:54 और 2 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी देर में ठीक सुबह 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 5:05 पर आप अंग्रेजी में समाचार सुन सकेंगे। 5:10 पर समय होगा कार्यक्रम आओ योग करें का। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग, दीर्घ श्वास प्रेक्षा और आसन। 5:20 पर समय होगा देशभक्ति गीत का और 5:30 पर आप सुन सकेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। सुबह ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 6:10 पर समय होगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। 6:40 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम चिंतन। 6:45 पर आप सुन पाएंगे रामचरितमानस बालकांड का भाग 90 और 6:55 पर आप सुन सकते हैं संस्कृत में समाचार। 7 बजे का समय होगा हिंदी समाचारों का। सात बजकर 5 मिनट पर आप अंग्रेजी में समाचार सुन सकते हैं और 7:10 पर समय होगा कार्यक्रम संगीतिका का। 7:30 पर आप गीतों भरी कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे और 8 बजे का समय होगा हिंदी समाचारों का। 8:15 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी समाचार मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर आप उर्दू समाचार सुन सकते हैं। 8:45 पर समय होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा का और 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम उद्योग पत्रिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री आज पेरिस में वीवा टेक शिखर सम्मेलन सहित अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंस, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
1: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग

0: के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की तथा व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि पहले दिन राष्ट्रपति मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। वे कल मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। बाद में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित चिकित्सा शिविर का उद्घाटन करेंगी। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को स्वीकृति दे दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। वहीं ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi arrived in Paris last night for the final leg of his visit to France. Upon his arrival in the French capital, Mr. Modi received a warm welcome from members of the Indian community gathered at his hotel. Enthusiastic supporters greeted the Prime Minister with cheers and expressions of support as he began his engagements in Paris. In Paris, PM Modi will attend the VivaTech 2026 alongside French President Emmanuel Macron. The VivaTech Summit is Europe's largest technology and startup event where Mr. Modi is expected to highlight India's growing innovation ecosystem and technological advancements. India will have the largest national pavilion at this edition of VivaTech Summit, a fitting symbol of the enormous potential for partnership between the Indian and European innovation ecosystem. The Prime Minister is also scheduled to address members of the Indian community during a special diaspora event. Prime Minister Narendra Modi has called for a safe, inclusive and human-centric approach to artificial intelligence, stressing that the true measure of AI lies not in power of machines, but in how effectively it empowers ordinary people. Addressing the session on ensuring a safe, rapid and efficient rollout of AI during the G7 summit in Evian, France, Mr. Modi said, artificial intelligence has the potential to transform every aspect of human life. However, he underlined that the technology must be guided by values, responsible design and effective governance. The G7 leaders adopted 3 key declarations aimed at promoting balanced, durable and resilient growth, securing critical mineral supply chains and creating a safer digital space for miners, with several partner countries extending support to the initiatives. During the G7 summit in Evian, France, the leaders issued a statement on balanced and resilient growth, stressing the need for stable energy markets, secure supply chains, and reforms in global economic institutions.

मैं योगाचार्य सुनील गौतम आज बात करेंगे ध्यान की एक बहुत सरल विधि के विषय में, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ यानी लंबा, श्वास माने श्वास, प्रेक्षा माने बारीकी से देखना, अर्थात लंबी गहरी श्वास लेना और बारीकी से देखना, फील करना, अनुभव करना, श्वास के आने जाने को देखना और अपना पूरा ध्यान उस पर लगा देना, यही है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं, लंबी गहरी श्वास भरते हैं और छोड़ते जाते हैं। अपने ऑफिस में, घर में, कार्यस्थल में, खेल के मैदान में, ग्राउंड में, कहीं भी गहरी सांस के अभ्यास को कर सकेंगे। इवन हम कभी देर तक रेड लाइट पर फंस गए, गाड़ी बंद कर दी, तनाव आ रहा है जाम में फंसे होने का, उस तनाव से मुक्ति के लिए भी हम अपनी लंबी गहरी श्वास का अभ्यास कर सकते हैं। कभी सामने वाले से कोई झगड़ा हो गया, अपने गुस्से को कैसे काबू करना है, तो भी हम अपनी लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करके अपने

अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। निरंतर लंबी गहरी सांस लेते रहने से हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में रक्त की सप्लाई सुचारू बनी रहती है। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हमारा ब्लड मूव करता है हार्ट से शरीर के अंगों के लिए, शरीर के अंगों और मस्तिष्क के लिए। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंग प्रत्यंगों से रक्त वापस आता है हार्ट के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। अर्थात हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय हमारे हार्ट से शरीर के ऑर्गन्स के लिए ब्लड की सप्लाई होती है। जब रक्त जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है शरीर के अंगों के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। तो जब श्वास को छोड़ते हैं और वही श्वास छोड़ते समय आपके ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त के साथ आती है हार्ट से लंग्स के द्वारा थ्रो करने के लिए। अर्थात जब ब्लड जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब वापस आता है तो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही दीर्घ श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया आपके रक्त को पूरी तरह फिल्टर करने के और आपके हार्ट को सुचारू रूप से काम करने में मदद करती है। पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार सुचारू करती है। लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना, अर्थात श्वास प्रश्वास। और इसी श्वास प्रश्वास के अभ्यास को आप सायास करते हैं, अर्थात जानबूझ के करते हैं, देखते हुए, विजुलाइज करते हुए, देखते हुए मीन मन की आंखों से देखते हुए करते हैं, फील करते हुए करते हैं, तो ध्यान हो जाता है। ध्यान की सब ग्राह्य विधि बन जाती है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा के दौरान जब आप श्वास को ले रहे हैं, धीरे धीरे पेट फूलेगा। जब श्वास छोड़ते हैं, धीरे धीरे पेट नीचे जाएगा। और इसी पेट के ऊपर नीचे होने को, यानी के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में कैसा प्रभाव हो रहा है श्वास के लेने और छोड़ने का, आप उसे अनुभव करने लग जाएंगे। और यही अनुभव करना, विजुलाइज करना, देखना, फील करना।

印度的立广播电台，听众朋友们，现在是普通话时间，从印度时间5:15到6:45和16:17:30。